0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेरवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी।

0: सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आकाशवाणी स्टूडियो से आज की हसीन सुबह का आगाज करते हैं दोस्ती के नाम। शुरुआत की जाए जहां आज उन लोगों के बारे में बात करके जो जीवन के हर मोड़ पर हमारी खुशियों को दोगुना और गमों को आधा कर देते हैं। जी हाँ, इसी को कहते हैं शायद दोस्ती। दोस्ती वो रिश्ता है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है।
1: नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस फ्रेंडशिप डे एपिसोड ऑफ आज सवेरे विद मी सायरा एंड फरहत। एंड बिल्कुल सही कहा आपने फरहत, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली यू नो बी अ गुड फ्रेंड, एंड दैट इज द रीजन वेर यू नो व्हेन यू विल सीक गुड फ्रेंड्स आल्सो। एंड वी यूज द वर्ड फ्रेंड सो कैजुअली, यू नो सम पीपल से ओ यू नो माई फेसबुक फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, बट फ्रेंड तो वो है ना, जो आपने कहा कि रात के 2 बजे भी अगर आपका दरवाजा खटखटाए तो आप भी ये ना पूछे अरे कि मतलब
0: क्यों आए,
1: इस वक्त क्यों आए हो, बस ये पूछे कि यू नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। सो आई थिंक दैट इज फ्रेंडशिप, एंड ऑफकोर्स इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बॉन्ड्स। एंड जब रिश्ते नातों में भी दोस्ती पहले अहमियत देते हैं लोग, आई थिंक दोज रिलेशनशिप्स दे गो अ लॉन्ग वे। सो यस, टुडे इज अ डे दैट इज डेडिकेटेड टू फ्रेंडशिप, सो विशिंग ऑल द लिसनर्स अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
0: बिल्कुल, और आज कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों को दोबारा से याद करें, अपने कॉलेज डेज को याद कीजिए, अपने स्कूल डेज को याद कीजिए और तुरंत फोन कर दीजिए अपने दोस्तों को।
1: यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली इवन टेक आउट टाइम एंड स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज आई थिंक दे आर द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स। आपके जितने भी स्ट्रेस होता है लाइफ में, बट व्हेन यू आर सिटिंग विद फ्रेंड्स देन यू ऑटोमेटिकली बिकम हैप्पी, यू रेमिनिस द गुड ओल्ड डेज एंड सम इंस्टेंसेस दैट यू प्रोबब्ली वेर यू नो वेरी फनी हो।
0: बिल्कुल सर, अगर 5 मिनट भी आप अपने अगर दोस्तों के पास बैठ जाइए और कुछ अगर मुश्किलात में आप हैं उनसे डिस्कस कर दीजिए, तो मुझे लगता है सारे गम अपने आप भूल जाता है।
1: यस, एंड स्पेशली फरहत, पीपल हु हैव लिव्ड इन हॉस्टल्स, आई थिंक दे क्रिएट फ्रेंडशिप्स दैट रियली रियली लास्ट यू नो फॉर अ लाइफ टाइम।
0: तो इसी के साथ आइए शुरुआत कर लेते हैं हमारे कार्यक्रम के आज सवेरे की। आज के अंक में बहुत कुछ होगा खास, हम महानगरों की खबरें जानेंगे, इसके अलावा जो है मौसम का हाल जानेंगे और अंत में याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को।
1: So let's start with the headlines first.
0: जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नशा मुक्त अभियान से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां भी चलाई जाएंगी। और ब्यूरो के साथ हैं हमारे संवाददाता।
2: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in areas of cleanliness, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
3: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं

0: देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन त्वांग के कलावांगपो सम्मेलन हॉल में कल संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से बाल अधिकारों को सुदृढ़ करने की नई प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। समापन सत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानुगु मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
2: US President Donald Trump has threatened to intensify military action against Iran, warning that American strikes will continue until Tehran halts attacks on shipping and returns to negotiations. The escalating hostilities come even as the US State Department issued a fresh security advisory, urging Americans in West Asia to consider leaving the region or be prepared to depart if the conflict worsens. The renewed tensions also spilled into Gaza and Lebanon, with Israel carrying out fresh strikes despite Hamas announcing it was prepared to disarm under a US-backed ceasefire framework. Meanwhile, Iran has warned that it is ready to strike key Israeli infrastructure and American energy facilities across West Asia if it comes under attack. In Peru, 13 people were killed after a tourist plane crashed into a field near the city of Nazca. According to a statement posted by Nazca's municipal government on social media, the aircraft was carrying tourists on a sightseeing flight over the famed Nazca lines and ancient geoglyphs etched into the desert by Peru's indigenous inhabitants centuries ago. The municipal government said the aircraft, operated by Peruvian airline Aerodyna, had departed from the nearby city of Ica. Peruvian authorities said the cause of the accident is under investigation.
1: और दक्षिण पश्चिम फ्रांस में लगी जंगल की भीषण आग पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद करीब 198,000 लोगों को घर लौटने की अनुमति दी गई। ये देश में शांतिकाल के दौरान सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक था।
2: In Gujarat, the IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts today, including Morbi, Surendranagar, Rajkot and Ahmedabad. The rain spell has now shifted towards Saurashtra, causing widespread waterlogging in several areas. We have a report.
3: Heavy rainfall continues to lash Gujarat as the monsoon spell shifted towards Saurashtra yesterday, bringing torrential rainpours to several districts, low-lying areas and disrupting normal life. Intense spell has pushed 20 reservoirs to overflow, with 30 dams placed on high alert. The Sardar Sarovar Narmada Dam, considered the lifeline of the state, has reached nearly 75% capacity, taking the state's total seasonal average rainfall past 64%. In view of the strong winds, fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 2 days, and a local cautionary signal number 3 has been hosted at all the major ports across the state. Meanwhile, the IMD has predicted that the intensity of the rainfall is likely to decrease gradually starting tomorrow. Aparna Kund, Akashwani News, Ahmedabad.
1: और अब ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों की जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार बल से।
4: धन्यवाद फरहत। ग्लासगो में अगर हम बात करें तो जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों की ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी भी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। इसके साथ ही भारतीय मुक्केबाजों ने 3 रजत पदक भी अपने नाम किए। मुक्केबाज प्रीति पंवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घांघस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवा

0: आच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण, जबकि जादुमणि सिंह, लवलीना बोरगोहेन और नरेंद्र बीरवाल ने रजत पदक जीते। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉर्ट पुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक अपने नाम किया। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक जीते। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम किया। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और जैसा कि फरत हम देख रहे हैं कि ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने ये लगातार शानदार प्रदर्शन अपना जारी रखा है, ये दर्शाता है कि देश के भीतर खेल ढांचे में लगातार सरकार कितना सुधार कर रही है।
1: और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे महानगरों की खबरों का, जिसमें होंगी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की खबरें और इसके अलावा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़े समाचार। तो सारस, सबसे पहले आपसे ही जान लेते हैं कि चेन्नई में क्या है खास।
2: Well, very interesting news is coming in from Chennai. जी. But before I read that news, I want to ask you कि आप ये बताइए, हमारे किचन में हम लोग किस चीज़ के लिए बड़े पर्टिकुलर होते हैं? कोई एक खाने की चीज़ है जिसके लिए हम लोग बहुत पर्टिकुलर रहते हैं?
1: खाने की चीज़ के लिए
2: गैसेस?
1: अच्छा, घी?
2: Yes, of course. I mean, everybody is so finicky, I think, in Indian households about the quality of ghee.
1: इसलिए मैं घर पे भी निकाल लेती
2: हूँ. Exactly. तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं. But those of you who probably don't have enough time, you know, to take out, to extract ghee at home, उनके लिए खबर बहुत अच्छी है. Well, researchers at the Central University of Tamil Nadu have developed a rapid analytical technique to detect cow ghee adulteration and simultaneously identify and quantify multiple adulterants. The technique could offer a low-cost tool to strengthen food quality checks. A spectrofluorometer exposes a diluted ghee sample to carefully selected wavelengths of ultraviolet and visible light. Naturally occurring compounds such as vitamins, chlorophyll and proteins then emit fluorescence from multiple angles. This creates a detailed three-dimensional fingerprint of the sample's chemical composition. So probably a very, you can say, easy and low-cost technique to detect the purity of ghee.
1: बिल्कुल, और घी के बहुत सारे फायदे भी हैं सारा। अगर आप रात में हल्के गुनगुने पानी में घी डाल के पिए तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है।
2: Oh really? I didn't know that.
1: आज से शुरू कर दीजिए।
2: Yes, absolutely. लेकिन मुझे उसकी और फायदे, that it's good for joints and you know, because it's very rich in calcium for joints and especially bone health. So that I knew and I think most of the people, और बहुत से लोग में myths होती हैं कि घी आपको you know मोटा करता है।
1: नहीं, बिल्कुल
2: excessive of everything is bad, but ghee is way better than you know your refined oil.
1: Refined oil से बहुत ही अच्छा है, बल्कि कोशिश कीजिए अगर आप खाना बना रहे हैं तो थोड़ा ही सही, लेकिन घी का इस्तेमाल जरूर कीजिए।
2: Yes, absolutely. So well, I think this news would probably benefit all our listeners. Now moving on to the city of Bengaluru. The Greater Bengaluru Authority Chief Commissioner Maheshwar Rao has appealed to citizens and residents' welfare associations to actively participate in the Bengaluru Green Cover campaign through a mass movement. He issued directions to municipal corporation officials in Bengaluru to issue necessary directions before the campaign to be launched on 15th of August. A large-scale tree plantation drive will be launched across the city on that day. It is planned to plant 60,000 saplings and distribute 40,000 saplings, for which 236 applications were received from the residents seeking 43,000 saplings. So that is a good initiative for a greener planet. Moving on to Hyderabad, well, Telangana police have rescued 6,307 children in a month-long special drive called Operation Muskan 12, aimed at ending child labour and child trafficking across the state. The operation ran through the month of July from 1st to 31st, and after training on laws and procedures, teams raided places where child labour is common, including railway stations, bus stands, temples, brick kilns, mechanic shops, construction sites and even tea stalls. Of the children rescued, 5,892 were boys and 415 were girls. 3,400

0: देखते हैं जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, प्ले ग्राउंड में होना चाहिए था, दे आर और समटाइम्स दे आर इवन इन्वॉल्व इन वेरी हैजर्डस वर्क.
1: बिल्कुल सर. और वैसे भी एक मानना भी है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये ऐसा नहीं है. हम सबकी जिम्मेदारी, अगर हम लोग इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं तो उसे हमें प्रमोट कतई ही नहीं करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप खुद से आप उनसे काम ना करवाएं.
0: एंड व्हाट इज आई मीन समटाइम्स स्टार्टलिंग फॉर हर, आई हैव सीन यू नो समटाइम्स वेरी एजुकेटेड पीपल, यू नो दे इन देयर हाउस दे एम्प्लॉय चिल्ड्रन एंड देन वेरी प्राउडली दे से कि अरे इसका बाप तो शराबी था, हमने इसको रेस्क्यू कर लिया, अपने घर में ले आए, इसको हम पढ़ाते भी हैं. आई मीन दैट भी इज सो पेनफुल बिकॉज वी डोंट टॉक लाइक दैट अबाउट आवर चिल्ड्रन. क्या हम अपने बच्चों से कहते हैं कि हम लोग इनको पढ़ा रहे हैं और इनसे काम भी रहे हैं. सो बट दिस इज समथिंग आई थिंक वेनी एजुकेटेड सो कॉल्ड एजुकेटेड आई ओनली कॉल सच पीपल लिटरेट.
1: बिल्कुल. अगर आप इन बच्चों की तरफ नजर उठाकर देखेंगे तो इसमें कई सारे बच्चे ऐसे भी जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और उनकी प्रतिभा को निखारना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए.
0: एंड आई थिंक वरत एवरी चाइल्ड इज टैलेंटेड, ईच वन ऑफ अस इज प्रॉब्ली यूनिक इन दिस वर्ल्ड एंड वी जस्ट नीड द राइट एनवायरमेंट यू नो टू नरिश एंड टू नर्चर दोज टैलेंट्स. सो आई थिंक ये हर बच्चे का हक है. And if we are doing that, it's not a favor that we are doing them, but it's their right.
1: जी बिल्कुल.
0: So what is the buzz that you have from the other cities?
1: जी हम लोग शिक्षा की बात कर ही रहे हैं तो आइए सीएम श्री स्कूल के बारे में बात कर लेते हैं. दिल्ली सरकार के सीएम श्री विद्यालय के विद्यार्थियों का दूसरा दल जर्मनी और जापान की अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक यात्रा पर रवाना हो गया है. विद्यार्थियों का एक समूह जर्मनी की प्रसिद्ध ड्यूअल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रणाली के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जिसमें कक्षा शिक्षण के साथ साथ उद्योगों में सवेतन व्यवहारिक प्रशिक्षण भी शामिल होगा. वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली गेट चौक पर ट्रैफिक की पाठशाला नामक कार्यक्रम का आयोजन किया. कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सुरक्षित ड्राइविंग और नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में जानकारी दी. वहीं अधिकारियों ने यातायात के नियमों का पालन करने वाले नागरिकों को सम्मानित और पुरस्कृत किया. तो मुझे लगता है सारा यातायात के बारे में तो खैर हर किसी को जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से गली चौराहे पे जाम लगता है ना, सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो सभी के लिए क्रिएट कर देती है.
0: एब्सोल्युटली.
1: और अब आइए आगे बढ़ते हैं, मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं. महाराष्ट्र सरकार जल्द ही एक व्यापक एम्बुलेंस पॉलिसी लाएगी ताकि इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट को ज्यादा कुशल और जवाबदेही बनाया जा सके. इसके तहत हर रजिस्टर्ड एम्बुलेंस की रियल टाइम डिजिटल निगरानी की जाएगी. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने बताया कि इस प्रस्तावित पॉलिसी का मकसद एम्बुलेंस से जुड़े पूरे सिस्टम को बेहतर बनाना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और डिस्पैच से लेकर रिस्पॉन्स टाइम, किराया तय करना और हॉस्पिटल इंटीग्रेशन तक सब कुछ इसमें शामिल है. और अब बात है कोलकाता की. इस्कॉन ने कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के 500 स्कूलों में 44,000 छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कल तारातला स्थित अन्नमृता फाउंडेशन की रसोई में इस पहल का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस्कॉन अगले 3 महीनों में 2,50,000 छात्रों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने संचालन का विस्तार करेगा, जिसमें पौष्टिक और संतुलित भोजन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी. भोजन में चावल, खिचड़ी या पुलाव, पनीर या कॉटेज चीज, सोयाबीन या मौसमी सब्जियां, साथ ही मिठाई या मौसमी फल भी शामिल होंगे. वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि भविष्य में नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा. उन्होंने कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए. महानगरों की खबरों के बाद अब आइए मौसम का हाल जान लेते हैं. आज राजधानी दिल्ली में शाम तक बारिश हो सकती है. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होगी. न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं कोलकाता में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
0: So if we talk about I think the capital, I think we are awaiting कि कई सावन का महीना तो शुरू हो गया लेकिन वो सावन की झड़ी जो है अभी तक नहीं लगी है. So we are hoping वैसी बारिश हो, but in down south it's much better. Well, Chennai will have a rain or thunder showers towards the evening or night. Temperatures are expected to hover between 27 and 36 degrees Celsius. Bengaluru will have a cloudy sky with light rain. Minimum temperature was 21 while maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with light rain or drizzle. Temperatures in Hyderabad are expected to range from 24 to 30 degrees Celsius.
1: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको

0: बता दें कि विश्व स्तनपान सप्ताह आज से शुरू हो गया है, जो सभी के लिए बेहद जरूरी है जानकारी लेना, क्योंकि नवजात शिशुओं के लिए माँ का दूध कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं।
1: That's right, Farhat. I think the first food of a baby is, of course, mother's milk, and it's very important to breastfeed the babies, especially exclusive breastfeeding for the first 6 months. They help build the immunity of the child.
0: जी, और अब आगे बढ़ते हैं, इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज ही के दिन 1987 में भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने फिलीपींस में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती थी, और ये उपलब्धि पाने वाले वो पहले एशियाई बने।
1: And I take back the listeners to the year 1858. Well, the government of India, matlab jo us waqt jo British government rule kar rahi thi, it transferred the power from East India Company to the British Crown. The Government of India Act came into place in the year 1858 on this day. In the year 1934, Adolf Hitler became Germany's Führer, consolidating the offices of the President and Chancellor both.
0: सन 2003 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लाइबेरिया में संघर्ष विराम लागू करने के लिए सेना भेजने की आज ही के दिन अनुमति दी थी।
1: On this day in the year 1943, the PT-109 incident took place in the Pacific, during which future US President John F. Kennedy displayed leadership after his patrol boat was sunk.
0: और सन 2012 में भारत ने ओलंपिक खेलों में एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। हम बात कर रहे हैं लंदन ओलंपिक 2012 की, जिसमें भारत ने 6 पदक जीते थे, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य शामिल थे। भारत इस प्रतियोगिता में 55वें नंबर पर रहा। पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष पर रहा, जिसने 104 पदक जीते थे।
1: And on this day, another war was waged. Well, in the year 1990, Saddam Hussein ordered the invasion of Kuwait, triggering the Gulf War.
0: और सन 2008 में सुधीर कुमार चतुर्वेदी ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में आज ही के दिन अपना कार्यभार संभाला था। और अब आइए बात करते हैं कुछ जानी मानी शख्सियतों के बारे में। सबसे पहले हमारी फेयरलिस्ट में है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। भारत में रसायन विज्ञान के जनक ये माने जाते रहे। वे एक सादगी पसंद और देशभक्त वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रसायन प्रौद्योगिकी में देश के स्वावलंबन के लिए अप्रतिम प्रयास किए।
1: That's right, and today is the birth anniversary of Pingali Venkaiah, and of course we all know that he designed the initial version of our international flag, our tricolor. And apart from his role in the independence movement, he was a lecturer, an author, geologist, educationist, agriculturist, and a polyglot. And interestingly, he actually joined the British Indian Army then at the age of 19 and served in South Africa during the Second Boer War of 1899 to 1902. During his service, he recognized the need for a national flag for India, as Indian soldiers were required to salute the Union Jack, which was the British flag. And inspired by his experience and later by attending the 1906 All India Congress Committee session in Calcutta, he developed a vision for a flag representing Indians, opposing the practice of hoisting the British flag at Congress meetings. Venkaiah presented his design for an Indian national flag to Mahatma Gandhi in 1921 during Gandhi's visit to Vijayawada. The flag initially consisted of red and green stripes representing Hindus and Muslims respectively, and on Gandhi's suggestion a white stripe was added to represent other communities in India as well. This flag design was used informally at Congress meetings from 1921 and served as the foundation for the Indian national flag, which was officially adopted in its final form by the Constituent Assembly on 22nd July 1947.
0: Bilkul sahi hai, Bharat के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया के सम्मान में भारत सरकार ने बाद में उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया। तो मुझे लगता है तिरंगे पर ये गीत सुनना तो बनता है।

0: और आपको बता दें सायरा की पिंगली वेंकैया की संस्कृत उर्दू और हिंदी भाषाओं में भी अच्छी पकड़ थी.
1: That's right, he was a polyglot. And who's the next on our list, Farhad?
0: हम बात कर रहे हैं हिंदी के प्रतिष्ठित कवि और गीतकार उमाकांत मालविया की, जिन्होंने आज ही के दिन जन्म लिया था. पौराणिक संदर्भों की आधुनिक व्याख्या करते हुए इन्होंने अनेकाएक मिथकीय कहानियां और ललित निबंधों की रचना की. उनकी बच्चों पर लिखी पुस्तकें काफी बेजोड़ रही. कवि

और श्रोताओं, अब हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के अभिनेता जिन्होंने लगभग 600 हिंदी, पंजाबी और गुजराती फिल्मों में काम किया, कमल कपूर की। ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने विलन का ही किरदार निभाया। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म चोर मचाए शोर का ये गीत, जिसमें मुमताज के फादर के रूप में ये नजर आए।

0: और श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हमें कहना होगा आपसे अलविदा। समय हुआ है 7:59 और 21 सेकंड। तो इसके साथ ही फरहत और सारा को दीजिए कार्यक्रम यही समाप्त करने की इजाजत।
1: That's right, it's time to wrap up. Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in, listeners. Have a great day ahead and a very happy Friendship Day.
0: Namaskar.

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के

0: विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1705 मामले दर्ज किए और 1710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और

0: क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन चार अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाई। जनसत्ता की खबर है कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है कॉकरो जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी AI की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है कोई बन रहा रचनाकार तो कोई AI से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट PG 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat

0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை எஃப்எம் கோல்டு.
1: 100.1 FM கோல்டில் திரைகானம் கேட்டு ரசிக்கும் முன்,
2: நமஸ்கார், மை ஹூ கைலாஷ் கேர் ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம். ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் யே மேரா கீத் பாரதிய சேனா, ஜோ தீனோ சேனாவோ கோ சமர்ப்பித் ஹை, ஹர் தேஷ்வாசி கோ சமர்ப்பித் ஹை, ததா பாரத் கே ஹர் சைனிக் கோ சமர்ப்பித் ஹை, பேராமிலிட்டரி கே அர்த்த சைனிக் பலோ கே ஹர் சைனிக் கோ சமர்ப்பித் ஹை, ரக்ஷா மந்த்ராலய சே லேகர் தேஷ் கே एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: இசைப்பெட்டகம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை தஞ்சாவூர் கே பி சிவானந்தம், சாரதா சிவானந்தம் ஆகியோரின் வீணை இசை ஒலிபரப்பாயிற்று. தஞ்சாவூர் டாக்டர் டி கே மூர்த்தி அவர்கள் மிருதங்கம். படைப்பு சென்னை வானொலி நிலையம்.
1: அடுத்த அறிவிப்பு சில நொடிகளில். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை செல்லியஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஜாகிருதி சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 12 अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया है। राज्य भर में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, ईंट भट्टे, मैकेनिक की दुकान, निर्माण स्थल और चाय की दुकानों पर काम कर रहे बच्चों में 5,892 लड़के और 415 लड़कियां शामिल थीं। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। इन बच्चों में 5,737 को उनके परिवारों से मिला दिया गया है, जबकि 570 को बाल देखभाल केंद्रों में भेज दिया गया है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत

0: 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले दो दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। उधर केरलम में जारी तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक दिन में 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उधर ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और पश्चिम एशिया में अमेरिका के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रारूप में अमूल्य योगदान दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. The initiative aims to inspire youths to stay away from substance abuse and encourage them to become ambassadors of positive social change in their communities. President Draupadi Murmu flagged off a Run PBG Soldier-a-thon at a ceremony held at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. Governor of Mizoram General V.K. Singh, who is the patron of the initiative, was also present on the occasion. In a social media post, the president said that the Soldier-a-thon serves as a unique platform to strengthen the bond between civilians and the armed forces, guided by the vision of Run for Soldiers, Run with Soldiers. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has reviewed the preparedness for the National Eligibility Cum Entrance Test for Postgraduate or NEET PG 2026 to ensure the smooth, secure, transparent and technology-enabled conduct of the examination. The exam is scheduled to be held on the 30th of this month. Telangana police have rescued 6,307 children in a month-long special drive called Operation Muskan 12, aimed at ending child labour and child trafficking across the state. The operation ran from 1st to 31st of last month. Around 620 police personnel from 124 subdivision teams took part in it. Of the rescued children, 5,737 were reunited with their families, while 570 were sent to childcare centers. U.S. President Donald Trump said the U.S. has agreed to hold off a planned military attack on Iran after Tehran and several Middle Eastern countries requested a pause, claiming that the framework of a potential agreement had been reached. In a social media post, Trump today said, the U.S. remained fully prepared for military action but had decided to suspend the planned strike to allow diplomacy to move forward. Union Home Minister Amit Shah paid tribute to Pingali Venkaiah on his birth anniversary today. In a social media post, the minister said that Pingali Venkaiah made an immortal contribution to designing the national flag, Tiranga, which flutters high as the symbol of India's pride and aspirations. Mr. Shah noted that his role in the independence movement and development

अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को रद्द करने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संभावित समझौते की रूपरेखा तैयार होने का दावा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बर्बर हमले जारी। बलूचिस्तान में नागरिकों के लापता होने की खबर। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदो बख्तियार ओदिलोविच आज से भारत के दौरे पर। पेरू में नाजका शहर के पास एक विमान दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमले टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इससे पहले ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान जहाजों पर हमले नहीं रोकता और बातचीत के लिए आगे नहीं आता तो अमरीका अपनी सैन्य कार्रवाई तेज करेगा। उधर अमरीका ने पश्चिम क्षेत्र में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने और हालात बिगड़ने की स्थिति में क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उस पर हमला हुआ तो वह इजराइल के अहम ठिकानों और पश्चिम एशिया में अमरीका के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए तैयार है। यूरोपीय संघ मंगलवार को सेउटा में अवैध अप्रवासन पर चर्चा के लिए आपातकालीन बैठक करेगा। ये बैठक स्पेन और कुछ अन्य सदस्य देशों के बीच लोगों की घुसपैठ की घटनाएं होने के बाद हो रही है। मोरक्को से लगभग 60,000 लोग स्पेन में अवैध रूप से घुस चुके हैं। इसके बाद यूरोपीय संघ के 22 देशों ने मिलकर इस संबंध में निर्णय लेने और सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सशस्त्र

0: बलों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर हमले जारी हैं। इसके साथ ही बलूचिस्तान में नागरिक जबरन लापता हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: बलूच यकजहती कमेटी BYC ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्यवाही की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार ये दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कमेटी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलीबारी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मनमानी गिरफ्तारी और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बजाय नागरिकों को निशाना बनाने की कड़ी आलोचना की है। ये बयान POJK में जारी अशांति के बीच आया है, जहां हाल के हफ्तों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। BYC ने कहा कि POJK में 52 दिनों से अधिक समय से जारी विरोध प्रदर्शन, लोगों की मौलिक अधिकारों, संसाधनों तक पहुंच, राजनीतिक स्वायत्तता और न्याय की मांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक समुदाय से POJK में कथित दमनकारी कार्रवाई पर गंभीरता से ध्यान देने का आग्रह किया है। इस बीच अमेरिका स्थित मानव अधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। विश्व दर्पण के लिए पूजा।
0: सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदो बख्तियार ओदिलवोच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर ईका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक रेस्तरां में हुए बम विस्फोट में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। रूस के सरकारी मीडिया के अनुसार ये विस्फोट भारतीय समय के अनुसार रात करीब 10:30 बजे कुंद्रिस्क्या स्क्वायर स्थित एक इमारत में हुआ। रूस की समाचार एजेंसी ने आतंकवाद रोधी समिति के हवाले से बताया कि अज्ञात महिला के रेस्तरां में घुसने के प्रयास को एक सुरक्षा गार्ड ने विफल कर दिया। इसके कुछ ही क्षणों बाद ये विस्फोट हुआ जिसमें एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की जांच जारी है। जापान के कुमामोटो प्रांत में पिछले सप्ताह आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। प्रांतीय अधिकारियों ने बताया कि इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी मौत भूकंप के कारण हुई है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला आज वियतनाम की थुई लिन युएन से होगा। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा सेमीफाइनल में ग्वेन से हारकर बाहर हो गई हैं। टेनिस में भारत के रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने आज बॉन ओपन 2026 में डबल्स का खिताब जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंग्लैंड के स्कॉट डंकन और स्वीडन के एडम हेइनोइन की जोड़ी को हराया।

0: और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन चार अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को रद्द करने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संभावित समझौते की रूपरेखा तैयार होने का दावा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बर्बर हमले जारी। बलूचिस्तान में नागरिकों के जबरन लापता होने की खबर। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदो बख्तियार ओदिलोविच आज से भारत के दौरे पर और भारत ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे स्थान पर। कुल पदकों की संख्या 39। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। United States agrees to cancel planned military attack on Iran. President Donald Trump claims framework of a potential agreement reached. Pakistani armed forces brutal attack on peaceful protesters continue in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Civilians forcibly disappear in Balochistan. Uzbekistan's Minister for Foreign Affairs Saido Bakhtiar Odilovich to undertake an official visit to India beginning today. 13 people killed in Peru after tourist plane crashes near the city of Nazca. India climbs to fourth position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. United States has agreed to hold off a planned military attack on Iran after Tehran and several West Asian countries requested a pause, claiming that the framework of a potential agreement had been reached. In a social media post, US President Donald Trump today said the US remained fully prepared for military action but had decided to suspend the planned strike to allow diplomacy to move forward. He said Iran and other countries in the West Asia had urged Washington to delay military action because the perimeters of a deal has been agreed to. According to Trump, the proposed agreement would include the immediate, complete and total opening of Hormuz Strait and an end to Iran's nuclear threat. Iran had not officially confirmed the claims made by the US president. Earlier, Trump has threatened to intensify military action against Iran, warning that American strikes will continue until Tehran halts attacks on shipping and returns to negotiations. United States has also urged its citizens across the West Asian region to remain alert and be prepared to leave if tensions escalate. Meanwhile, Iran warned that it is ready to strike key Israeli infrastructure and American energy facilities across the West Asia if it comes under attack. Pakistani armed forces' brutal attack on peaceful protesters continue in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Over 50 people were killed and hundreds injured in a brutal crackdown by Pakistani forces in the illegally occupied territory. In a social media post, Joint Awami Action Committee member Sardar Umar Nazir Kashmiri alleged that security forces were responsible for the deaths. The US-based rights organization Human Rights Foundation has condemned the reported use of force by Pakistani security forces against the unarmed protesters. The organization called

0: ஒலித்த அந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது சுகமான ராகங்கள் நிகழ்ச்சி. மீண்டும் திரைப்பட பாடல்கள் ஒலிக்கும் 11:10 திரைக்காணத்தில். சில நாடுகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மை முனீஷ் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं. नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे. माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे. अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की. बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया. ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी. श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें. तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान 12 अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया है. राज्य भर में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक एक विशेष अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें 5,737 बच्चों को उनके परिवारों से मिला दिया गया, जबकि 570 को बाल देखभाल केंद्रों में भेज दिया गया है. गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है. हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है. मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई. बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है. राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है. तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है. साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है. अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
1: उधर केरलम में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है. मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे. विदेश मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे. साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ

என்ன

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

0: एफ वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
0: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मुस्लिम

0: धार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008

0: 1968 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉट पुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन। भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी नेरम 2:30।

0: திரைகாணம் நிறைவு பெற்றது. தொடர்வது இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की. प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है.
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है. हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे. और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है.
1: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे.
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा. हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी. नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा. आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया.
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले न छिपाएं. पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया. मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकालने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया है. सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मूज जल डमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है. अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा. पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था.

असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित जनगणना कर्मी 17 अगस्त से 15 सितंबर तक गृह सूचीकरण अभियान और आवास जनगणना का संचालन करेंगे। केरलम में मूसलाधार वर्षा से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता हैं। प्रभावित इलाकों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिंगली वेंकैया को 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष वर्ग में अवतार सिंह और यश घंगास को हार का सामना करना पड़ा। साइकिलिंग में हर्षवीर सिंह सेखो और दिनेश कुमार भी पुरुषों की 40 किलोमीटर पॉइंट्स रेस के क्वालिफाइंग दौर से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி. தி நியூஸ் ரெட் பாய் தன்வி குரானா. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
1: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है. आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो.
0: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance use. Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams.
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है.
0: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event. The participants include governors of states, chief ministers of states, My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. President Draupadi Murmu flagged off a run PBG Soldier-a-thon at a ceremony held at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. Governor of Mizoram, General V.K. Singh, who is the patron of the initiative, was also present on the occasion. In a social media post, the president said that the Soldier-a-thon serves as a unique platform to strengthen the bond between civilians and the armed forces, guided by the vision of Run for Soldiers,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: for filling up various general central service posts on deputation basis. The vacancies include 3 posts of assistant, 3 posts of stenographer grade 1 and 2 of upper division clerk. The posts carry pay scales as per the 7 CPC pay matrix, with assistant and stenographer grade 1 posts in level 6. The upper division clerk post in level 4. Eligible candidates should submit their applications through proper channel in the prescribed format within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For detailed eligibility criteria and application format, kindly visit the official website, that is at www.handlooms.nic.in. The Department of Science and Technology, DST, Ministry of Science and Technology, Government of India, has invited applications for 2 temporary posts of Scientific Attaché Group A, gazetted on deputation, including short-term contract bases. 1 each at the Indian missions in Tokyo, Japan and Berlin, Germany. The posts carry pay level 13A for a period of 3 years. Eligible applicants include scientists, technologists from central or state governments, universities, recognized research institutions, autonomous bodies, and similar organizations. Candidates should possess a doctorate degree in natural or agricultural sciences or master's degree in engineering, technology or medicine, along with 12 years experience in research and development, science and technology activities, including 6 years in managerial roles. The maximum age limit is 56 years. Interested candidates must apply online within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly do refer to the website at www.recruitment.dst.gov.in, or you could also go on to www.dst.gov.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। IREL इंडिया लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। उपप्रबंधक तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा, सहायक प्रबंधक तकनीकी औद्योगिक सुरक्षा, सहायक प्रबंधक तकनीकी इंस्ट्रूमेंटेशन, उप महाप्रबंधक तकनीकी आईटी, प्रबंधक तकनीकी आईटी, उप प्रबंधक तकनीकी आईटी तथा उप प्रबंधक तकनीकी जियोलॉजी। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए नियम, शर्तें, वेतनमान, आरक्षण और तैनाती के स्थान की जानकारी के लिए आप देख सकते हैं विभाग की वेबसाइट www.irel.co.in। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में लेखाधिकारी और सहायक रजिस्ट्रार के पदों को भरा जाना है। शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता, स्कोर कार्ड, चयन प्रक्रिया आदि का विवरण और ऑनलाइन आवेदन भरने का लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट है www.svpuat.edu.in। विश्वविद्यालय का भर्ती पोर्टल www.recruitmentsvpuat.in को यदि आप देखेंगे तो उस पर भी ये तमाम जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आप सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 9429426467। अंतिम तिथि है आवेदन की 3 अगस्त 2026। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, एसोसिएट प्रोफेसर खेल चिकित्सा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोचिंग एथलेटिक्स। गैर शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं परीक्षा उपनियंत्रक, सहायक लाइब्रेरियन, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक अनुभाग अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट, अकाउंटेंट,

0: लाइब्रेरी सहायक और नर्सिंग अटेंडेंट। आवेदन फॉर्म, शुल्क, योग्यता के नियम, आवेदन कैसे करें आदि जैसी जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट nsu.ac.in। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 60 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 24 पद अनारक्षित हैं, 9 पद अनुसूचित जाति के लिए, 5 अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 16, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध URL लिंक पर आप जा सकते हैं। ये लिंक है fr.iitism.ac.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 सितंबर 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

दोस्ती जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता जिसे हम खुद चुनते हैं। याद है स्कूल के वो दिन जब अगस्त शुरू होते ही फ्रेंडशिप बैंड खरीदने की होड़ लग जाती थी और सबसे बड़ा सवाल होता था, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? अगर किसी और को पहले बैंड बांध दिया तो बस आधे दिन की नाराजगी तय, लेकिन अगले ही पल सब फिर पहले जैसा।

0: तो तारीख चाहे 30 जुलाई हो या अगस्त का पहला रविवार, दोस्ती का मतलब हमेशा एक ही रहता है, वो शख्स जो आपकी सबसे अजीब हरकतों पर सबसे ज्यादा हंसता है, आपकी हर कमजोरी को जानता है, फिर भी हर मुश्किल में सबसे पहले कहता है चल मैं हूं ना। इसलिए आज किसी पुराने दोस्त को एक छोटा सा संदेश जरूर भेजिएगा। श्रोताओं, आप सभी को अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे अपने कार्यक्रम परिक्रमा का, क्योंकि हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और आपका पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का भी समय हो गया है। तो श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक खबर की सुर्खियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना।
1: Hi Jaya, and yes, a very happy Friendships Day to each and every listener of ours. You're tuned to Parikrama on Akashwani Gold at 100.1 MHz. Let's begin this program with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat.
0: नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए।
1: Heavy rains continue to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps.
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार।
1: In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open.
0: और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर।
1: And now let's take you to our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are going to talk about World Anglo-Indian Day and also Nasha Mukt Bharat Abhiyan.
0: Bharat वह देश है जहां हर भाषा एक कहानी है, हर संस्कृति एक पहचान और हर समुदाय इस देश की खूबसूरत तस्वीर का एक अनोखा रंग भरता है।
1: And I believe the real beauty of India lies in the countless communities that over generations had woven their unique stories into the fabric of this nation.
0: आज वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे पर हम एक ऐसे ही खास समुदाय का जश्न मना रहे हैं, एक ऐसा समुदाय जो भले ही संख्या में छोटा हो लेकिन भारत में उसका योगदान हम में से कई लोगों की सोच से कहीं ज्यादा है।
1: Absolutely, but what exactly is World Anglo-Indian Day? It is observed every year on 2nd of August, which is today, marking the birth anniversary of Frank Anthony, born in 1908, the towering leader of the Anglo-Indian community in independent India.
0: यानि कि एक वकील, शिक्षाविद, सांसद और भारत की संविधान सभा के सदस्य के तौर पर फ्रैंक एंथनी ने अपना जीवन इस बात को सुनिश्चित करने में लगा दिया कि आधुनिक भारत के इतिहास में एंग्लो इंडियन समुदाय को उसका उचित स्थान मिले।
1: Absolutely, but who are the Anglo-Indians? The answer lies not today, but in history. The Anglo-Indian community traces its roots to the families of mixed Indian and European ancestry, particularly during the British period in India.
0: समय के साथ उन्होंने एक अनोखी पहचान बनाई, दिल से भारतीय लेकिन यूरोप से प्रभावित परंपराओं को अपनाने वाले। दशकों तक एंग्लो इंडियन समुदाय ने भारत के रेलवे, डाक सेवा, कस्टम, रक्षा संस्थानों और शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई।
1: Indeed, places like Kolkata,

0: சென்னை, பெங்களூரு, லக்னோ, சிக்கந்தராபாத் அண்ட் ஆல்சோ தி யுனீக் ஆங்கிலோ இந்தியன் செட்டில்மெண்ட் இன் மெக்குல்சிகஞ்ச். மெக்குல்சிகஞ்ச் இஸ் த ப்ரெசன்ட் டே ஜார்க்கண்ட் தட் பிகேம் டிஸ்டிங்டிவ். அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் த சேம், டிட் யூ நோ இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் த 1930s ஆஸ் ஹோம்லேண்ட் ஃபார் தி ஆங்கிலோ இந்தியன் கம்யூனிட்டி, நிக்னேம்ட் த மினி லண்டன் ஆஃப் இண்டியா. இட் பிகேம் அ பிளேஸ் வேர் இண்டியன் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் மெட் யூரோப்பியன் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் வேர் ஜெனரேஷன்ஸ் க்ரூ அப் செலிப்ரேட்டிங் போத் இண்டியன் அண்ட் ஆல்சோ வெஸ்டர்ன் ட்ரெடிஷன்ஸ் வித் ஈக்குவல் ஜோய்.
1: बिल्कुल तन्वी, और जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान बनाने वालों ने एंग्लो इंडियन समुदाय की खास परिस्थितियों को समझा. कई सालों तक भारत के राष्ट्रपति सदन में एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते थे. हालांकि 2020 में 104वें संविधान संशोधन के साथ नॉमिनेशन का यह प्रावधान खत्म हो गया, फिर भी यह भारत के संवैधानिक इतिहास का एक अहम हिस्सा बना हुआ है.
0: You know what's wonderful about communities like the Anglo-Indians? They remind us that identity doesn't have to fit into neat little boxes. You can love roast dinners and even biryani, Christmas carols and Bollywood songs all together, English literature and Indian festivals. And that's, to be honest, real beauty of our beloved India. And as the Nobel laureate Rabindranath Tagore beautifully said, the highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all its existence.
1: Bilkul. To aaj World Anglo Indian Day par aaiye sirf ek samuday se kahin zyada ka jashn manaye. Aaiye khud bhartiyata ke vichar ka jashn manaye. World Anglo Indian Day ki shubhkamnaen. और अब हम बात करते हैं अपने डेटलाइन 2 यानी कि नशा मुक्त भारत अभियान पर. तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलत फैसला चुपचाप किसी के सपने कैसे छीन सकता है? किसी होनहार छात्र या अच्छे खिलाड़ी के बारे में सोचिए जिसका भविष्य अचानक बदल जाता है. कभी कभी यह सब उत्सुकता के एक पल या किसी बुरी संगत से शुरू होता है.
0: Absolutely. That's why today's message matters to every Indian family. As India moves towards the dream of a Viksit Bharat, Prime Minister Narendra Modi has urged the nation's youth to stay physically fit, mentally strong, and also away from addiction.
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है. और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है. और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है.
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए हर रविवार को जागरूकता गतिविधियों के साथ 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान की घोषणा की.
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा. हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी. नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा. आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप.
0: The Prime Minister also appealed to the families not to stay silent out of fear or social stigma, but to seek timely help and encourage open conversations.
1: और प्रधानमंत्री ने अचानक अलग थलग पड़ जाने, अजीब व्यवहार या फिर बार बार पैसे मांगने जैसे चेतावनी वाले संकेतों पर भी जोर दिया है और माता पिता से कहा कि वे इन्हें जल्दी पहचाने.
0: Mr. Modi further called upon teachers and educational institutions to spread awareness among students, saying that classrooms are where not only knowledge is but also values are nurtured.
1: बिल्कुल, और इस अभियान को पहले ही बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है जिसमें देश भर की 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवा शामिल हुए हैं. यह इस बात की एक जबरदस्त याद दिलाता है कि विकसित भारत का निर्माण सिर्फ

0: टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बल्कि स्वस्थ सोच, आत्मविश्वास से भरे युवाओं और जिम्मेदार नागरिकों से होता है।
1: After all, every young life saved from addiction is another step towards a stronger, brighter and Viksit Bharat.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि आज उनके पास क्या कुछ खास है।
1: So let's begin with Puducherry. The three-day Manifest International Dance Film Festival concludes today, leaving Puducherry immersed in the rhythm, movement and visual poetry of dance on screen. South Asia's only annual International Dance Film Festival offered audiences a rare opportunity to experience some of the finest short dance films from around the world. More on this from our correspondent.
2: The concluding day of the festival began with a creative moment for children workshop conducted by Mumbai-based dancer and educator Melita D'Souza. Through improvisation, games and collaborative exercises, the workshop encouraged young participants to explore movement, teamwork and creative expression. Later, Odissi dancer, teacher and researcher Rekha Tandon led a workshop titled Dancers Yoga. The workshop introduced participants to movement as path to awareness inspired by Indian classical dance, yoga and contemplative philosophy. The evening program features youth, a curated package of international short dance films from Finland and China. The films explore imagination, identity, youth, cultural inheritance, self-discovery and contemporary interpretations of traditional rituals through movement and visual storytelling. The festival also presents a 57-minute showcase of Asian dance films from India, Hong Kong and the United States. The selection brings together stories of tradition, memory, emotion and environmental awareness. The festival will conclude with the performance transition followed by a closing gathering of filmmakers, dancers, workshop facilitators and delegates. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashvani News, Puducherry.
0: और अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। सबका साथ सबका विकास, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा प्राथमिकता देते हैं। छत्रपति संभाजीनगर जिले के एक किसान लक्ष्मण अहेर ने अपनी खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़कर स्वयं का विकास तो किया ही, साथ ही अपने आसपास के सभी किसानों को भी आधुनिक खेती का मार्ग दिखाकर विकास के मार्ग पर आने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रधानमंत्री के इस मंत्र को भी यथार्थ किया है। तो सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
3: किसी ज्ञान को केवल अपने तक सीमित रखने के बजाय उसका प्रसार करने से अपने साथ साथ दूसरों का भी विकास होता है। छत्रपति संभाजीनगर जिले के किसान लक्ष्मण आहिर ने इसी बात को अपनी जीवन में उतारा और सफलता प्राप्त की। अपने इसी अनुभव को लक्ष्मण आहिर ने आकाशवाणी के साथ साझा किया।
4: खेती की शुरुआत मेरे लिए आसान नहीं थी। कम उत्पादन, बढ़ती लागत, जल संकट और मौसम की अनिश्चितता जैसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। हमने अपने ही गांव में 10 एकड़ जमीन 10 वर्ष के अनुबंध पर ली। इससे कुल 3 हेक्टर अनार, 1 एकड़ मौसमी, पपीता, खरबूज जैसी फसल खेती की संपूर्ण क्षेत्र में 3 खेत तालाब बनाकर खेती में ड्रिप सिंचाई, प्राकृतिक मल्चिंग, सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग, केचुआ खाद तथा एकीकृत कीट प्रबंध अपनाकर भरपूर उत्पादन प्राप्त किया। नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना के अंतर्गत संरक्षित खेती घटक के माध्यम से हमने 2 एकड़ क्षेत्र में शेडनेट हाउस सफलतापूर्वक स्थापित किया। कोरोना के नियम का पालन करते हुए कृषि विभाग की सहायता से किसान से उपभोक्ता प्रत्यक्ष बिक्री का कौशल प्राप्त कर फार्मर टू कस्टमर बिक्री से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर लिया। खेती में अपनाई गई तकनीकों को अन्य किसानों तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आसपास के किसानों को अपनी खेती में बुलाकर विभिन्न प्रयोग दिखाए और उन्हें आधुनिक तरीकों से खेती करने के लिए प्रेरित किया। इन सभी कार्यों को देखते हुए महाराष्ट्र शासक कृषि विभाग ने वर्ष 2020 में युवा किसान पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।
3: लक्ष्मण आहिर की तरह हर एक सफल किसान ने अपनी सफलता की कुंजी दूसरों के साथ साझा करने की आवश्यकता है। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
1: And from Maharashtra, let's move towards Goa. The Directorate of Skill Development and Entrepreneurship has launched a new initiative to promote self-employment among young people in Goa. Under the Mukhya Mantri Swayam Rozgar Yojana, business training has been introduced in skill development programs across all 10 government industrial training institutes, or we say ITIs, in the state. A report.
5: As part of the program, 48 ITI instructors completed a 6-day faculty mentorship development program. They have been trained to guide students who want to start their own

0: businesses. More than 1,600 ITI trainees also took part in entrepreneurship awareness programs. They learned about the business planning, innovation, startup opportunities, financial assistance, and self-employment schemes. The initiative aims to increase skilled youth to become job creators instead of only job seekers. It also reflects the government's commitment to promoting self-employment and supporting Goa's economic growth. Today, government ITIs are going beyond traditional vocational training. Along with technical skills, trainees are also learning digital skills, business management, and how to build successful careers through employment or self-employment. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
1: तो पहले हम पुदुचेरी में थे, फिर महाराष्ट्र गए, गोवा गए और अब चलेंगे छत्तीसगढ़, और इसलिए तो हमारे इस कार्यक्रम का नाम परिक्रमा है। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की, जो अपने घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के जंगलों में अनेक तरह के वन्य जीव भी निवास करते हैं और इन वन्य जीवों की सुरक्षा और जंगलों की अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए अब आधुनिक तकनीक की सहायता ली जा रही है। सुनिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: बस्तर वन मंडल में जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन से हाईटेक निगरानी शुरू की गई है। इस तकनीक के चलते रात के अंधेरे में भी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस ड्रोन घने अंधकार में भी बॉडी हीट के आधार पर जानवरों या संदिग्ध लोगों को आसानी से खोज लेते हैं। इससे भालू, तेंदुआ, हाथी सहित अन्य वन्य जीवों की गतिविधियों की सटीक जानकारी मिल रही है। वन विभाग इस तकनीक का उपयोग मानव और वन्य जीवों के बीच होने वाले संघर्ष को कम करने के लिए भी कर रहा है। जब भी कभी जंगल से लगे गांवों के पास हाथियों या अन्य जंगली जानवरों की मौजूदगी की सूचना मिलती है तो थर्मल ड्रोन से उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाया जाता है। इसके आधार पर ग्रामीणों को सतर्क कर दिया जाता है, जिससे जन धन की हानि की आशंका कम हो जाती है। इसके अलावा जंगलों में अवैध कटाई और लकड़ी की तस्करी पर भी थर्मल ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है, जिससे इस पर प्रभावी नियंत्रण पाने में मदद मिली है। संदिग्ध गतिविधियों का पता चलते ही वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। इस तरह से आधुनिक तकनीक छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में बहुत मददगार साबित हो रही है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से विकल्प शुक्ला।
3: And from Raipur, let's move towards Cuttack. In a major boost to rural digital connectivity in Odisha, more than 50,000 villages of the state are expected to have high-speed internet connectivity over the next 3 years. The initiative aims to strengthen rural digital infrastructure and improve access to online public services. More on this from our correspondent.
4: To accelerate digital transformation in rural areas, the Electronics and Information Technology Department of Odisha Government has signed an agreement with the Digital Bharat Nidhi, Department of Telecommunications, Government of India and Bharat Sanchar Nigam Limited for the implementation of the BharatNet Phase 3 program. Under the amended BharatNet program, the center will invest more than 3,384 crore to upgrade 6,799 gram panchayats with the IPMPLS, a high-performance networking technology and a ring topology network. The project also aims to expand fiber to the home connectivity to rural households, enabling high-speed internet access in over 50,000 villages across Odisha in the next 3 years. Optical fiber connectivity hubs at the block and gram panchayat levels will be established under the project, with each block and panchayat functioning as a data exchange center. From the panchayat's fiber connection will be extended to individual households. This initiative will accelerate digital inclusion, improve access to e-governance, education, healthcare, and create new opportunities for every village in Odisha. For Parikrama with Nirmalya Behera, this is Smriti Rekha Tarnia for Akashvani Cuttack.
1: अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल। तो बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है और यह तन्वी का पहला PWF वर्ल्ड टूर खिताब है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताई जू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है।

0: शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छिपाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इस सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केरलम में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राज्य भर में कल से अब तक वर्षा संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। 5,700 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई हैं। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह उभर ना पाने के कारण श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ஆகாஷ்வாணி நேரம் 6:05.
3: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.

0: தொடர்வது இந்தியல் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की. प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का

0: தொடர்வது டெல்லி ஏஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह। श्रोताओं, करीब 6 दशक तक देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती रहे वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत

0: भारत ने इस वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। आज देश का कोई भी जिला वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले की श्रेणी में नहीं है। देश में नक्सलवाद का प्रभाव लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लेकिन नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई, ये देश के कई हिस्सों तक कैसे फैला और फिर ऐसा क्या बदला कि भारत इस चुनौती से बाहर निकलने में सफल हुआ। साथ ही नक्सल मुक्त भारत की इस उपलब्धि के बाद आगे की राह और सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, आज के विश्लेषण में हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नक्सलवाद का नाम सुनते ही हमारे मन में हिंसा, सुरक्षा बलों पर हमले और दूर दराज के जंगलों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन संसद में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा पक्ष सामने रखा जो इस पूरी चुनौती की मानवीय कीमत को समझाता है। उन्होंने एक ऐसी आदिवासी बेटी का उल्लेख किया जो हिंसा और भय के माहौल के कारण 32 वर्ष की उम्र तक अपने हाथों में मेहंदी तक नहीं लगा सकी। उसने पहली बार मेहंदी आत्मसमर्पण करने के बाद पुनर्वास केंद्र में देखा और ये सिर्फ इकलौती घटना नहीं है। नक्सली हिंसा ने करीब 15,000 बच्चों का जीवन प्रभावित किया और हजारों परिवारों ने दशकों तक नक्सलवाद का दंश झेला। श्रोताओं, इस चुनौती की शुरुआत कैसे हुई और ये इतने बड़े क्षेत्र तक कैसे पहुंची, साथ ही भारत ने इस स्थिति को बदलने के लिए क्या रणनीति अपनाई, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
1: भारत में नक्सलवाद की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से हुई। यहीं से शुरू हुए एक हिंसक आंदोलन ने धीरे धीरे देश के कई राज्यों में अपनी जड़ें जमा ली। समय के साथ ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया। माओवादी विचारधारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के बजाय हिंसा और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सत्ता परिवर्तन में विश्वास रखती है। इस विचारधारा में बंदूक के दम पर व्यवस्था बदलने की बात कही जाती है। इनका अध्याय वाक्य था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इसी सोच के साथ अलग अलग माओवादी संगठनों ने कई इलाकों में अपनी गतिविधियां बढ़ाई। वर्ष 2004 में दो बड़े संगठनों के विलय के बाद कई राज्यों में नक्सली गतिविधियों में तेजी देखी गई। कई दूर दराज और वन क्षेत्रों में लंबे समय तक सड़क, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी रही। इन इलाकों में शासन की पहुंच सीमित थी। माओवादियों ने इसी स्थिति का फायदा उठाया और कई क्षेत्रों में उन्होंने सड़कों, स्कूलों और दूर संचार जैसी सुविधाओं को भी निशाना बनाया ताकि ये इलाके मुख्य धारा से कटे रहें। वर्ष 2010 के आसपास नक्सली हिंसा अपने चरम पर थी। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने इस चुनौती से निपटने के लिए समन्वित रणनीति पर काम शुरू किया। वर्ष 2015 में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना लागू की गई। इस रणनीति में केवल सुरक्षा अभियानों पर ही नहीं बल्कि विकास कार्यों, स्थानीय समुदाय के अधिकारों, बेहतर प्रशासन और लोगों का विश्वास जीतने पर भी समान रूप से जोर दिया गया। इस समन्वित प्रयास का असर धीरे धीरे जमीन पर दिखाई देने लगा। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, विकास कार्यों में तेजी आई और शासन की पहुँच उन क्षेत्रों तक बढ़ी जहाँ पहले ये बहुत सीमित थी। परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में जहां 126 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, वहीं ये संख्या घटते घटते मार्च अप्रैल 2026 में शून्य हो गई।
0: श्रोताओं, इस बदलाव के पीछे स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय और जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस विषय पर आकाशवाणी रायपुर के संवाददाता विकल्प शुक्ला ने एंटी नक्सल ऑपरेशन के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र कुमार विज से विशेष बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
2: सबसे महत्वपूर्ण जो कारण लगता है मुझे वो है पॉलिटिकल विल। देखिए, कमिटमेंट के साथ एक स्टेटमेंट जारी हुई गृह मंत्री की ओर से और उसको पूरा करने के लिए जो स्टेप्स लेने थे वो लिए गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले दो साल के अंदर करीब 100 से ज्यादा सिक्योरिटी कैंप्स स्थापित होना। देखिए, सिक्योरिटी कैंप्स पहले भी थे, बस्तर बहुत बड़ा इलाका है, तो वो जो सिक्योरिटी कैंप्स उन इलाकों में स्थापित हुए जहां सिक्योरिटी वैक्यूम था, वो अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके थे, साउथ और वेस्ट बस्तर के अंदरूनी इलाके थे, नीचे के इलाके थे। वहां पर जब तैनाती हुई तो माओवादी की बटालियन या बड़े फॉर्मेशन, उनके शेल्टर के स्थान, उनकी तकनीकी इकाइयां जो थी हथियार बनाने वाली, उनके काम जब डिस्टर्ब हुए, शेल्टर उनके जब डिस्टर्ब हुए, उनको मूव आउट करना पड़ा, तो ये दौर था जिसका ज्यादा असर पड़ा। तो पॉलिटिकल विल और उसके साथ सप्लीमेंट हुए रिसोर्सेज जो लगने थे, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक ही पेज पर थे, दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था और आगे बढ़ने में कोई देर नहीं लगी।
0: जमीनी स्तर पर सुरक्षा

0: व्यवस्था को मजबूत करने में पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाने की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस बारे में भी राजेंद्र कुमार विज ने अपने अनुभव साझा किए, आइए सुनते हैं।
1: मुझे याद है जब छत्तीसगढ़ बना था तब छत्तीसगढ़ का पुलिस बल 22-23 हजार था मात्र। आज अगर आप देखेंगे तो वो बढ़कर 80 हजार हो गया है। जो हमारी बटालियंस थी वो 7 थी, बढ़कर 22 हो गई हैं। थाने थे, कई गुना बढ़ गए हैं। तो ये जो पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है इसमें काफी समय लगता है। इवन जब मैं वहां पर आईजी पुलिस था बस्तर में, तब वहां इवैक्यूएशन के लिए हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करता था। ये 2006-7-8 की बात, उस समय चरम सीमा पर था माओवाद की जो हिंसात्मक कार्रवाइयां थी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ने में अलग अलग स्कीम्स केंद्र सरकार लाई, कुछ राज्य सरकार लाई, पुलिस स्टेशन का फोर्टिफिकेशन हुआ, उनकी पेरीमीटर सिक्योरिटी बढ़ी, टावर्स लगे, इंटेलिजेंस के लिए अलग एजेंसी बनाई गई, स्पेशल टास्क फोर्स बनाए गए। वो समय था बीच में डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का गठन हुआ 2015 में। उसके अलावा जो बस्तर फाइटर बल है वो 3000 करीब स्वीकृत हुआ, जिसमें सिपाही हवलदार थानेदार तक 2000 का पद जो है वो नए भर्ती हुए। तो लोकल लोगों के भर्ती होने से क्या होता है कि वो एरिया को जानते हैं, वो भाषा को जानते हैं, वो संस्कृति को जानते हैं, उनके कुछ रिश्तेदार नक्सली हैं और कुछ इस तरफ हैं। तो वो जो एडवांटेज पुलिस को मिला लोकल लोगों को भर्ती करने का, वो अभी पिछले सालों में कुछ मिला है।
0: श्रोताओं, किसी भी बड़ी चुनौती पर मिली सफलता को बनाए रखना उसे हासिल करने जितना महत्वपूर्ण होता है। आज जब देश का कोई भी जिला वामपंथ उग्रवाद प्रभावित नहीं माना जाता, तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे की राह क्या होगी। जिन क्षेत्रों ने वर्षों तक हिंसा का दौर देखा, वहां अब शांति और विकास को कैसे मजबूत किया जा सकता है, आइए जानते हैं इस अगली रिपोर्ट में।
2: आज देश का कोई भी जिला अब वामपंथी उग्रवाद प्रभावित नहीं माना जाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार का काम पूरा हो गया है। अब चुनौती इस उपलब्धि को लंबे समय तक बनाए रखने की है, ताकि नक्सलवाद दोबारा सिर न उठा सके। इसी सोच के साथ सरकार ने 37 जिलों को लेगेसी एंड थ्रस्ट जिलों की श्रेणी में रखा है। ये जिले अब नक्सल प्रभावित नहीं हैं, लेकिन यहाँ कुछ समय तक सुरक्षा और विकास से जुड़े प्रयास जारी रखे जाएंगे। इसके अलावा एक जिले को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है, जहाँ नक्सली हिंसा और उनका संगठन पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेकिन स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अब ध्यान केवल सुरक्षा अभियानों पर नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने पर है कि विकास का लाभ हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे। सड़क, दूरसंचार, शिक्षा, कौशल विकास, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं की पहुंच लगातार बढ़ाई जा रही है। साथ ही स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मजबूत करने, पंचायतों की भूमिका बढ़ाने और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर उन सुरक्षा शिविरों में दिखाई देती है, जिन्हें कभी नक्सली हिंसा से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। अब ऐसे एक तिहाई सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्रों में बदला जा रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों को आजीविका, कौशल विकास, सरकारी योजनाओं की जानकारी, डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों जैसी कई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। छत्तीसगढ़ के नेतानार में पहला जन सुविधा केंद्र शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही जनजातीय युवाओं को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने के लिए ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जा रहा है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: श्रोताओं, कभी नक्सलवाद की चुनौती को देश के एक बड़े भूभाग तक फैले तथा कथित रेड कॉरिडोर के रूप में देखा जाता था। एक समय तिरुपति से पशुपति तक इसके प्रभाव की चर्चा होती थी, लेकिन आज भारत का कोई भी जिला वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले की श्रेणी में नहीं आता है। जिन क्षेत्रों ने दशकों तक हिंसा का दौर देखा, वहां अब शांति के साथ शिक्षा, रोजगार और बेहतर जीवन के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, और यही नक्सल मुक्त भारत की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी सफलता भी है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही, नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक ललित।
3: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशस्य यूनः शारीरिकरूपेण स्वस्थाः मानसिक

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we'll also be taking calls on your mutual fund related queries, but do remember that we do not address fund specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Karubari Khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj Ravivar hai aur har Ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke sare sawalon ke jawab is karyakram mein denge. Koshish karenge ki de paaye. Sawal poochne ke liye aap shrotaon hame in numbers par call kar sakte hain. Ye numbers hain 2331-4444, 2331-0481 aur 2371-7106. इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: जी, धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ निशित कुमार.
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स आफ्टर 4 मंथ्स. इन्फ्यूज मोर देन 20,000 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज इन जुलाई. In bullion market, gold and silver declined last week, and domestic investors to focus on RBI monetary policy decision, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक चार महीने बाद कुल खरीदार बनकर उभरे. जुलाई में भारतीय इक्विटी बाजार में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ. सराफा बाजार में पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई और भारतीय निवेशक अगले सप्ताह आरबीआई की मौद्रिक नीति के फैसले, कॉरपोरेट कमाई के नतीजे और भू राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब रुक करते हैं आज कार्यक्रम में लिए गए पहले खबर के लिए. लगातार चार महीनों की बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अब भारतीय इक्विटी में कुल खरीदार बनकर उभरे हैं. डिपॉजिटरी के ताजा आंकड़ों के अनुसार एफपीआईज ने जुलाई में घरेलू शेयर बाजार में 20,200 करोड़ रुपए का निवेश किया. कुल निवेश में से 6,732 करोड़ रुपए शेयर्स एक्सचेंजों पर खरीदारी के जरिए आए, जबकि 13,468 करोड़ रुपए का निवेश प्राइमरी मार्केट के जरिए किया गया. वैश्विक सेमीकंडक्टर व्यापार में गिरावट के कारण एफपीआईज ने अपने निवेश का कुछ हिस्सा उभरते बाजारों की ओर लगाया. इस खरीदारी में घरेलू मैक्रो इकोनॉमिक सूचकांकों में सुधार और मजबूत तिमाही के नतीजों का भी योगदान रहा है. जुलाई में आए इस बदलाव के बावजूद एफपीआईज ने इस कैलेंडर वर्ष में अब तक भारतीय इक्विटी से 2,54,072 करोड़ रुपए निकाले हैं. इस बीच सरकार की कर नीति में बदलाव के बाद भारत के ऋण बाजार में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बरकरार है. जुलाई माह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने फुल्ली एक्सेसिबल रूट के जरिए ऋण प्रतिभूति बाजार में 3,033 करोड़ रुपए और जनरल रूट के जरिए 29,212 करोड़ रुपए का निवेश किया है. पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है. वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया. सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान सहित 7 ओपेक प्लस सदस्यों ने बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य तेल बाजार की स्थिरता को बनाए रखना और भागीदार देशों को पिछले अतिरिक्त उत्पादन की भरपाई में तेजी लाने की अनुमति देना है. ओपेक प्लस सदस्यों ने सहयोग घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की, जिसके अनुपालन की निगरानी संयुक्त मंत्री स्तरीय निगरानी समिति द्वारा की जाएगी. और श्रोताओं, दिल्ली से हमारे साथ इस बीच यशपाल जुड़ रहे हैं. यशपाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: गुड इवनिंग मार्केट.

0: सारे फंड्स हैं इनमें जो वैसे आपको डोमेस्टिक एक्सपोजर ही देते हैं, मतलब हमारे इंडियन मार्केट्स का ही एक्सपोजर देते हैं, बट एक स्लाइस ऑफ अब्रॉड आपको दे देते हैं कुछ 10-15% बाहर की सिक्योरिटीज़ में लगा के. तो आपके पोर्टफोलियो के लिए एक शुरुआत के लिए वो 10-15% भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो ऐसे फंड्स को आप देख सकते हैं जो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकते हैं.
1: Sneha, we were discussing about the markets, and also if we can see, if rather we are seeing that the FPIs have returned, and also US President Trump also saying that there is peace which is coming in the coming days, although it remains to be seen whether it comes at all.
0: Absolutely.
1: So now with the current market situation, do you feel that this trend is only going to go up and probably not go that negative as it has been going over the past 5-6 months now?
0: I would actually like to disappoint everybody listening here, because it is not in, you know, our control or even in anyone's control to sort of promise something that we cannot really promise. Of course, markets will go up or down is basically a hindsight call. And even though, you know, more popular, let's say Warren Buffett kind of investors wouldn't say that. Coming back to the point that you just raised, Mr. Trump having said that peace might just return, and the idea is that his statements have for long been kind of, you know, stirring the market, which actually sort of shows the fact that we cannot depend on the short-term aspects that market continues to offer us. Also, we cannot really control what happens in the market. So the uncertainty bit is slightly out of the way for even a retail investor as well as for experts. Like I said, what remains in your control are the factors pertaining to your portfolio. Like I was saying, you know, your asset allocation, make sure to have some kind of debt allocation in your portfolio, because when the markets turn red, your anxiety increases. If you have, let's say, 20% of debt in your portfolio, that will help provide some kind of cushion to your equity and maybe just help you psychologically navigate through those ups and downs. So yeah, asset allocation, rebalancing periodically, continuing with your SIPs, not stopping your SIPs, that becomes your, you know, go-to goal amid all of these chaos.
2: जी बिल्कुल श्रेया, स्नेहा, इसी बीच विनोद जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से. विनोद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो
2: जी,
3: मैं पूरी मार्केट मदर टीम को नमस्कार.
2: नमस्कार.
3: मैं 2017 से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट, बट मैंने सुना ना रिबैलेंसिंग करना चाहिए, ये सब एक्सपर्ट बोलते हैं, बट मुझे आता नहीं है रिबैलेंसिंग कैसे करते हैं, और अगर इसको ना करें तो लॉन्ग टर्म में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्लीज ये बताएं. थैंक यू.
0: बिल्कुल विनोद जी, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है. रीबैलेंसिंग जो सब बोलते रहते हैं कि करना ज़रूरी होता है, उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से होता है कि साइकोलॉजिकली ये कैसे होता है कि जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स से आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या फिर आप ऑल इक्विटी फंड्स लेते हैं.
2: स्नेहा, हम क्यों ना यहाँ से शुरू करें कि रीबैलेंसिंग करना होता क्या है.
0: बिल्कुल, ये एक्चुअली यही मैं शुरुआत करी थी. रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि अपने पोर्टफोलियो पे एक नज़र डालना.
2: हाँ.
0: और अगर वो नजर डाल के आपको डर लग रहा है,
2: हाँ,
0: इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, आपको अपना एक जो एंजाइटी लेवल्स है उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है. वहां पे एक चीज काम आती है जिसे हम, जैसे मैं अभी बता रही थी, एसेट एलोकेशन. कुछ डेट और कुछ इक्विटी सोच के आपने इन्वेस्ट करा होता है, बट मार्केट के उतार चढ़ाव कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो जो एक एलोकेशन होती है जो आपने अपनी सूझबूझ से करी थी वो बढ़ जाती है. तो मान लीजिए आपने सोचा था कि इक्विटी आप 70 रखेंगे, आप डेट 30 रखेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा डर जाते हैं जब मार्केट का उतार चढ़ाव एकदम वायलेंट हो जाता है. तो ऐसे टाइम में अब मान लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपने 70 इक्विटी सोचा था, आपका इक्विटी 80 हो गया है और डेट कम हो गया है, तो मार्केट जब वो जूम कर रही है, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया है, बट एक डर बीच में रहता है कि अब यहां से गिर गई तो आपके पास तो उतना डेट है ही नहीं जो आपको एक तरीके का कुशन प्रोवाइड कर पाए. तो जब मार्केट, अगर ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो 100% गिर रहा है, वो डेट की वजह से आप 100 ना गिर के 80% गिरेंगे, तो एक मन में बैलेंस मेंटेन हो जाता है, इसे ही हम रीबैलेंसिंग कहते हैं. अब होता क्या है कि अगर आप नजर नहीं डालेंगे पोर्टफोलियो पे तो आपको पता नहीं चलेगा, एकदम से मार्केट गिर जाएगी, आप सोचेंगे मेरा इतना ज्यादा कैसे गिर गया,
2: नुकसान कैसे हो गया,
0: नुकसान कैसे हो गया. तो उन सब थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए रीबैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट होता है. अगर मान लीजिए कोई वैसे ही इस तरीके

0: से किया जाता है कि फिर आपने जितना सोचा है कि इक्विटी होना चाहिए आप उतना बेच कर आप उसको कम कर दीजिए और उसको डेट में मूव कर दीजिए. काफ़ी लोगों के लिए करना मुश्किल हो जाता है. तो मान लेते हैं आप अपने माइंड में एक नंबर सोच लेते हैं कि 10% से जब ऊपर नीचे होगा आप तभी ये एक्शन लेंगे. तो ये एक्शन मेरे हिसाब से, जैसे विनोद जी पूछ रहे थे, इसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नुकसान क्या होता है, तो ये बेसिकली अपना एक इंटरनल साइकोलॉजिकल बिहेवियर मैनेज करने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक रहती है. जैसे SIP भी इसीलिए ही हम कहते हैं करने के लिए कि मार्केट के उतार चढ़ाव से आपका एवरेज आउट हो जाता है जो एक प्राइस होता है और उसका जो मूवमेंट होता है. तो अगर विनोद जी आप ये खरीद बेच में नहीं कर पाते हैं, एक साल में भी आपसे ये नहीं हो पाता है, तो मान लीजिए आपका 10% का आपने नंबर सोचा है कि 10% से इक्विटी बढ़ेगा या कम होगा तभी आप एक्शन लेंगे, तो वो एक्शन आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप अपनी बेचने के बजाय आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर रहे थे उनको अगर आप पॉज कर देते हैं. सब फंड्स को नहीं कर सकते, जो फंड आपके लिए नुकसानदायक रह रहा है इस पूरे टाइम में उसके लिए आप पॉज कर सकते हैं. तो आप क्या कर रहे होंगे कि आप अपने बुरे फंड को फीड करना बंद कर देंगे और फिर लंबे समय में ऑटोमेटिकली जो एलोकेशन होगी वो रीबैलेंस हो जाएगी. तो विनोद जी मेरी समझ में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि रीबैलेंसिंग एक साल में एक बार कर लेना चाहिए. इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या हमें ये करने की ज़रूरत है या नहीं. अगर आपकी जो एसेट एलोकेशन रहती है वो आपको बिल्कुल सही लग रही है, आपको लगता है आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए, उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं.
1: यू आर ट्यून इन टू मार्केट मंत्रा ऑन आकाशवाणी. यू कैन कॉल अस ऑन आवर टेलीफोन नंबर्स 2331-44-44, 2331-0481 and 2371-7106. And in some other stories, the National Stock Exchange, NSE, is set to introduce a new method for closing price discovery through the closing auction session, CAS, from tomorrow. The new system will change the way closing prices are determined for eligible futures and options, F&O stocks, in the cash market, with the aim of improving price discovery and aligning Indian markets with the global practices. Under the new framework, non-F&O stocks will continue regular trading until 3:30 p.m. with no change in their trading schedule. Stocks included in the F&O segment will see continuous trading until 3:15 p.m., followed by the closing auction sessions from 3:15 p.m. to 3:35 p.m. Stocks and index F&O trading will continue until 3:40 p.m. This move will extend equity derivatives trading by 10 minutes, resulting in different closing times across market segments. The extension of F&O trading hours is aimed at creating a smoother link between the cash and derivatives markets while enhancing efficiency and improving the accuracy of the closing price determination. Previously, closing prices were calculated using the volume weighted average price, VWAP, of trades executed during the final 30 minutes of the trading session. Sneha, with the staggered timings of the cash and the derivative markets, how do you see this impacting the markets overall?
0: Right. So the biggest impact actually, like you mentioned, is in the price discovery, and that lies in the derivative segment where this closing auction session actually matters the most, in ways it really doesn't matter for mutual fund investors. However, I would like to actually tune on the other side, because a retail investor would be worried with the news that we just mentioned as to what the impact really is for them. So what happens is, like, every day when the stock market closes at 3:30, every stock gets one closing price, or let's say the average of everything that has happened, which is, like you mentioned, is based on the volume weighted average price. So what this means is, when SEBI says that it has changed, it has actually sort of made your NAVs less manipulative. Since the price discovery now comes down to one particular fair price that is not affected by how the buyers and sellers are coming into the market and reacting to their specific stocks, the NAV is also based on, for a mutual fund, the NAV is also based on this closing price, which gets published in the newspaper the next morning that we guys see. But now with this, the new closing auction mechanism that they've mentioned, it is sort of becoming a more fair price. So having said that, it becomes more trustworthy. The NAV that you now see would be sort of less manipulative. So while the process has become more transparent, and which is always good for a mutual fund investor.

0: एलोकेशन ही आपको देते हैं. अब निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आपको लार्ज कैप एलोकेशन ही देते हैं, बट जो 100 बड़ी कंपनी है उनमें जो नीचे वाले 50 होते हैं उनका, तो उनमें जो एक लिक्विडिटी का एस्पेक्ट रहता है वो निफ्टी 50 से थोड़ा सा कम रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं रहता है. तो दोनों का ही एक्सपोजर आप रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसे चुनाव करने वाली बात नहीं है. वो आप इस बेसिस पे कर सकते हैं, आप टॉप 50 का एक्सपोजर चाहते हैं कि आप बॉटम 50 का चाहते हैं. बॉटम 50 में आप ऐसा देख सकते हैं कि वो आपको, मतलब जो सेकेंड हाफ होता है वो शायद से आपको एक कुछ टाइम में बेटर रिटर्न पोटेंशियल दे सकते हैं, क्योंकि टॉप 50 ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुके हैं. बट अगर आप प्लेन वेनिला इंडेक्स फंड देखना चाह रहे हैं तो आपको निफ्टी 50 से वो काम आसानी से हो जाएगा, बस जो ज़्यादा खर्चा कम लेता हो और बहुत ही अच्छे तरीके से बेंचमार्क को ट्रैक करता हो.
1: सराफा बाजार में पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रहा. यूएस ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी, डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व के सख्त रुख के कारण

0: रखकर 1,41,511 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी फ्यूचर्स कारोबार में 2% से अधिक की गिरावट के साथ 2,17,198 रुपए प्रति किलोग्राम पर समाप्त हुई। कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना फ्यूचर्स कारोबार में सप्ताह के दौरान 0.5% गिरकर $4,000 से अधिक प्रति ट्राई औंस पर बंद हुआ। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी फ्यूचर्स कारोबार में सप्ताह के दौरान लगभग 2% गिरकर $58 प्रति ट्राई औंस पर बंद हुई। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। ये वृद्धि पहले के अनुमानों से अधिक है। कल जारी SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अनुमानों से बेहतर है।
1: Packed with key market triggers, including the Reserve Bank of India's monetary policy decision and a fresh round of quarterly earnings reports. Market sentiment will also be driven by geopolitical developments, crude oil prices, foreign institutional investors, FII flows, commodity prices and currency movements. Market participants will closely monitor the key economic indicators, including purchasing managers' index PMI readings, foreign exchange reserve figures and monthly automobile sales data. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week. Three main board IPOs are scheduled to make their stock market debut, while one new main board issue will open for subscription. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the West Asian conflict, along with the US employment data and a fresh batch of corporate earnings. Inflation data from South Korea will also remain on the radar. Quick comment on that. Sneha, how do you see the markets playing out next week?
2: I always believe that the market outlook is should always remain sort of cautiously positive, since I am a very optimistic person and I would like investors to also believe in that.
0: स्नेहा कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और निशित के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू स्नेहा। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, foreign portfolio investors turn net buyers after 4 months, infuse more than 20,000 crore rupees into Indian equities in July. In the bullion market, gold and silver prices declined last week, and domestic investors to focus on RBI monetary policy decision, corporate earnings, results and geopolitical developments for Qs next week. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
5: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
4: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
5: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा

0: से जुड़ी गतिविधियां होगी, नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, छात्र मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन समझौतों में से एक के अंतर्गत चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और ऑस्ट्रेलिया के रीबाउंड संस्था के सहयोग से लागू की जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर में प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। केरल में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूब नारंग महिलाओं की 78 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking at the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
0: Aaj hum sabhi जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
2: He added that the launch marks the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance use. Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams.
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता,

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கில செய்தியறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர்ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की. प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है.
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है. हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे. और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है.
1: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का अनूठा मंच है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां भविष्य को आकार देंगी, इसलिए शिक्षण संस्थानों के लिए अपने शिक्षण विधि का आधुनिकीकरण करना आवश्यक है. यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यूकेपीएनपी ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर

0: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। यूके पीएनपी के अध्यक्ष सरदार शौकत अली कश्मीरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कई बैठकें की। प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान से अपने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का पालन करने और नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग बंद करने का आह्वान किया। प्रतिनिधिमंडल ने गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई, अधिकृत क्षेत्र में इंटरनेट और दूरसंचार सेवाओं की बहाली, कर्फ्यू हटाने और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तथा मानवाधिकार संगठनों को स्थिति का आकलन करने के लिए निर्बाध पहुंच की भी मांग की है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए डाले गए वोटों की गणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद सुबह 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। ये सम्मेलन हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगा। इंडोनेशिया में मदरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों का तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking at the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: मिस्टर मोदी सेड दैट ड्रग एडिक्शन डाइवर्ट्स पीपल फ्रॉम देयर गोल्स एंड डिस्टेंसेस देम फ्रॉम अचीविंग देयर ड्रीम्स। मोर देन 1 crore यूथ फ्रॉम 28,000 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। All arrangements are in place for the counting of votes for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh tomorrow. Polling for the Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh was held on the 30th of last month. Counting of votes will begin at 8 a.m. tomorrow. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee report, domestic passenger vehicle sales grew 24.1% year-on-year in June, electricity demand increased 11.5%, exports rose 15.5%, industrial credit expanded 19.2% and the index of

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: திரைகாணம் நிறைவு பெற்றது. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி ஏஞ்சல்.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा

0: मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना

0: चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
1: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
2: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि

ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। ग्लासगो के

0: अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi River recedes. Rainfall intensity decreases in Keralam, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
3: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of the nation. The Prime Minister also urged families not to hide cases of substance abuse due to social stigma.
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है, तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।
2: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event, including My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandaviya, today said the dream of a drug-free India can be realized only through active public participation and the

साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था, लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद भारत के ख्वाब को पहली बार एक धुन मिली।

0: 11 सितंबर 1942, पहली बार जनगण मन के बुलंद स्वर यूरोप के ब्रास बैंड और स्ट्रिंग्स के साथ गूंजे। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये उस मुल्क की आवाज थी जिसका जन्म अभी होना बाकी था। जलावतन भारतीयों के बीच यूरोप की धरती पर आजादी पहली बार सुरों में ढल रही थी। ये निर्वासन में जन्मी आजादी की एक ऐसी सिंफनी थी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी।
1: There was an orchestration done of the tune of Jana Gana Mana by the Hamburg Radio Orchestra.
0: Dr. Sugato Bose, Adhyaksh, Netaji Research Bureau.
1: It was played as India's national anthem for the first time at the inauguration of the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration. It was beautifully played. And Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg, and behind him, we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.

कुछ ही महीनों बाद इतिहास ने एक और असाधारण अध्याय लिखा। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया तक करीब 90 दिनों की एक बेहद खुफिया और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा और फिर 1943 की शुरुआत में नेताजी का सिंगापुर पहुंचना। यहीं उन्होंने राज बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली।

0: उस समय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर।
1: 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर पधारे, उस समय पूर्वी एशिया में इतनी खुशी हुई कि तमाम पूर्वी एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और सरानों ने गीत गा के उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था,

0: इस गीत को मुमताज हुसैन साहब ने लिखा और इसका स्वर मैंने दिया।
1: नेताजी जानते थे जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, वो लोगों के दिलों और जहन में भी लड़ी जाती है, और वहां तक पहुंचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी। 21 अक्टूबर 1943, आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक हिंदुस्तानी रूप तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था। आबिद हसन ने मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को सवारा, और इस तरह जन्म हुआ आरजी हुकूमत आजाद हिंद के कौमी तराने का।

0: प्रख्यात कवि और प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं कि ये गीत किस तरह विविधता में एकता के उस भाव को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एक एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत मूल्यवान है। और हम देखते हैं ना, आजाद हिंद फौज के जो तीन नायकों पर जो मुकदमा चला, तो उसमें एक कर्नल सहगल, एक कर्नल ढिल्लन और एक जनरल शाहनवाज, तो एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, तो ये भी एक अनूठी चीज है। तो उसमें जो एक पंक्तियां आती हैं, वो भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, और हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला।
0: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगतो बोस।
2: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था, वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना। वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, इम्फाल और कोहिमा में आजादी।

0: ka jang lara.
1: सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आजाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत बना, कदम कदम बढ़ाए जा।

0: आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के बलिदान का ये संगीतमय स्मारक ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोही घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लगभग 8 दशकों के बाद आज भी इसकी लोकप्रियता का रहस्य क्या है?
1: Simple lyrics tapping into core emotions of courage, unity and collective identity and foot tapping beats.
0: गौरा धवन लाल देश के वरिष्ठ कमेंटेटरों में से हैं।
1: मुझे मिलिट्री सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस की लाइव कमेंट्री करते हुए 4 दशक से अधिक हो गए हैं, पर आज भी कमेंट्री के समय जब ये गाने प्ले होती हैं, ये धुनें प्ले होती हैं, तो उनके बजते हुए कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं होता। बस मुख बंद होते हैं, अपने हाथ और पांव उसी बीट के साथ टैप करते हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं। जो सेंटिमेंट्स ये धुनें और गाने कन्वे करते हैं, शब्द उनके सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं।
0: आज कदम कदम बढ़ाए जा भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्चिंग सॉन्ग है।
2: 1996 में जनरल शंकर राय चौधरी ने इस बात को उठाया। ये सुभाष चंद्र बोस के जमाने में हुआ था, 1942 में। क्यों ना हम अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए इसको शुरू करें।
0: मेजर नजीर हुसैन, भारतीय सैन्य संगीत की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम।
2: उस वक्त जब 1942 के अंदर ये बनाया गया था, ये सिंपल कॉमन म्यूजिक के हिसाब से बनाया गया। इसको शंकर राय चौधरी ने ही जब सवाल उठाया 1996 में जब हुआ, तो इसको अरेंजमेंट जो एक्चुअल अरेंजमेंट है मिलिट्री म्यूजिक का, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन कंपोजर हो, इसको 3 टुकड़ों में बनाया जाता है। एक तो इंट्रोडक्शन, देन मेलोडी, देन ब्रास 2T, दिस दैट वाज द फोर्स, जवान के कदमों के लिए फोर्स लाना, फिर अगेन मेलोडी, देन ट्रियो। तो इसको मिलिट्री बैंड के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक कैप्टन HB बराल, हिम हाजिर बराल को दिया गया और उसने इसको मिलिट्री बैंड के लिए अरेंजमेंट किया। मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट, नॉट कंपोज।
0: सेना मुख्यालय में सैन्य संगीत सलाहकार रह चुके विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर नजीर हुसैन।
2: दिस इज द फर्स्ट इज अ इंट्रोडक्शन। Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom kadam kadam badhaye, this is melody, pehle jo tha introduction tha, no melody, kadam kadam badhaye ja khushi ke geet gaaye ja ta la la la la la la la ta la la la la la la la, this is melody, now is a brass beat, la la la la la la la la pa pam pam pam pam pam pa pam pa pam tam taram taram tam pam pam pam da da, this is the brass duty, this is the josh jawan ke hriday mein lane ke liye, dimag mein lane ke, then again is a melody, la ra la ra ra ra ra ra खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा।
0: अब इस गीत के शब्दों और उसकी भावना पर रोशनी डाल रहे हैं कवि और वरिष्ठ प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।
3: ये गीत लिखा कैप्टन राम सिंह जी ने और धुन भी उन्होंने ही बनाई है।

हालांकि इसी मुखड़े का एक गीत बंशीधर शुक्ल जी का भी है। बंशीधर शुक्ल जी का जो गीत है उसके अंतरे बिल्कुल अलग हैं, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है, क्राफ्ट के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से वो बेहतर गीत है। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ाया जा कैप्टन राम सिंह जी ने जो लिखा है, जहां तक एक मार्चिंग सॉन्ग की जो जरूरत होती है, जो जोश जो जज्बा चाहिए वो उसमें आपको मिलेगा। पहली ही पंक्ति में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अब जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बीहड़ जंगलों से, और तमाम सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, और जा कहां रहे हैं, जंग करने के लिए। मारे भी जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, लेकिन खुशी से जाना है, एक जज्बे के साथ जाना है, साहस के साथ जाना है, और दुश्मन को जो है किसी तरह उसको खत्म करना है। फिर एक जज्बा है कि दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, गुलामी को हटा देंगे, मिटा देंगे। तो एक एक पंक्ति में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो जोश है, वो बिल्कुल अलग तरह का है, और जो एक मार्चिंग सॉन्ग के लिए जरूरी है वो सब कुछ इस गीत में है।

0: गीत हैं शिल्प के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से बेशक उनमें कच्चापन है, लेकिन जज्बात का सच्चापन है, बहुत जोश भरते हैं ये कविताएं, देश प्रेम से ओतप्रोत है एक एक पंक्ति है, और बहुत मूल्यवान है उन फौजियों के लिए जो लड़ रहे थे एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, कम साधनों के साथ। जैसे एक गीत में आता है कि हम गोली खाकर झूमेंगे। अब ये गोली वही है जो जान ले सकती है, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं गोली खाकर झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर चूमेंगे। अब ये जो जज्बा है ये एक फौजी में और जो जंग करने जा रहा है, वो इस तरह की पंक्तियां आती हैं जो जोश भरती हैं, किसी में भी जोश भरती हैं।
1: युद्ध समाप्त हुआ लेकिन आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे शुरू हुए तो उसके गीतों पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर सुगतो बोस।
2: The trial began on the 5th of November and ended on the 31st of December of 1945. And there was a huge popular upsurge across the whole country in support of Netaji's soldiers. And even if the British tried to, you know, ban INA songs, that was not very effective because in the public gatherings that were held, INA songs began to be performed. And then once Claude Auchinleck was forced to release the three INA officers, there was a slogan in those days, Lal Kile Se Aaye Awaaz, Saigal Dhilan Shanawaz. At that stage, you know, everywhere as part of the celebrations, and for example, on Netaji's birthday, on the 23rd of January of 1946, these INA songs were being performed everywhere.
1: कैप्टन राम सिंह की कंडक्टिंग बेटॉन ने हजारों दिलों की धड़कनों को एक ही लय में बांध दिया था। हिमाचल प्रदेश में जन्मे इस गोरखा सैनिक ने अपनी संगीत प्रतिभा से आजाद हिंद फौज के सांगीतिक संसार में नई जान फूंक दी।
3: ये वायलिन मुझको नेताजी ने अपने करकमलों से मुझे भेंट की, और भेंट करते समय कहा था कि राम सिंह ये वायलिन भारतवर्ष में भी बजेगा।

0: हंसते हंसते जीना हो नेताजी।
1: मुमताज हुसैन के अलावा आजाद हिंद फौज के गीतों में कई ऐसे गीतकारों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें सूबेदार बलदेव सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट

0: लेफ्टिनेंट मुश्ताक और यहाँ तक कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी शामिल थे। आइए कैप्टन राम सिंह की जुबानी सुनते हैं उनके कुछ साथियों और उनके गीतों के बारे में।
1: ये गीत सेकंड लेफ्टिनेंट ज्ञानचंद हसर जी का लिखा हुआ है, जिसकी धुन मैंने बनाई थी।

हमारे आजाद हिंद फौज के जवान जब दिन भर बहुत परिश्रम करते थे, शाम को जब भोजन करने अपने मेस में जाते थे तो खाना उना खाने के बाद फिर सारी कंपनियां इकट्ठे होकर कहते थे चलो भाई जरा मनोरंजन हो जाए, तो वो कहते थे कवाली गाया जाए।

0: राम लिया। जय हिंद भैयो कहो जय हिंद।
1: नेहरू ब्रिगेड के कमांडर कर्नल ढिल्लन साहब ने नेताजी का फरमान कहकर एक गीत लिखा है, वो है नेताजी का फरमान, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो।

रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भी एक विशेष गीत तैयार किया गया था। ये रेजिमेंट नेताजी के बेहद निकट थी, क्योंकि नेताजी के लिए रानी झांसी रेजिमेंट सिर्फ महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, वो उनके उस भारत का ख्वाब थी जहां औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़े, जहां इज्जत, बराबरी और जिम्मेदारी तीनों में कोई फर्क न हो। और इसी सोच को इस गीत ने आवाज दी।

0: इन गीतों का संग्रह आज भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो में सुरक्षित है और netaji.org पर निःशुल्क उपलब्ध है। जनगण मन की धुन के संगीतकार को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। प्रोफेसर सुगतो बोस हमें 1918 में दिनेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा तैयार की गई संगीत रचना की याद दिलाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि शुभ सुख चैन और जनगण मन की धुनों में कहां बारीक अंतर है।
1: The tune of शुभ सुख चैन की is slightly different. There are nuances which are different from the tune of Dinendranath Tagore's Janagana Mana. There are more komal notes that have been added. The second verse of the Janagana Mana song is very beautiful. It's not part of our national anthem, only the first verse is. But the second verse says, Aharah tab avhan pracharit shunitab udar bani Hindu Bodh Shikh Jaina Parashik Musalman Krishtani Purab Pashchima

0: Jaya Jaya Jaya Jaya Ho. You see, the Jaya He becomes Jaya Ho. That's the nuance, that's the slight variation that was made in the Azad Hind score of the Hindustani version of our national anthem.
1: आकाशवाणी आर्काइव्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन का वाद्य रूप पहली बार दुनिया के सामने आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में पेश किया गया। इसकी प्रस्तुति रेडियो हैम्बर्ग चेंबर ऑर्केस्ट्रा ने की थी और उसके बैंड लीडर थे एगिल क्रुटके। हैम्बर्ग स्टेट आर्काइव्स में इस प्रस्तुति का उल्लेख कुछ इस तरह मिलता है। जनगण मन, टेक्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर, कोडिफिकेशन ऑफ म्यूजिक अंबिक मजुमदार। लेकिन अंबिक मजुमदार कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बीएल मुखर्जी की इस दुर्लभ आर्काइवल रिकॉर्डिंग में मिलता है।
2: एक शाम नेताजी ने हम सबको अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मुझसे गाने का आग्रह किया क्योंकि मैं बर्लिन रेडियो पर नियमित रूप से गाया करता था। हमारे कार्यक्रम का नाम था नमस्ते हिंद। हमारे साथ एक और सज्जन थे, हालांकि वो पूरी तरह हमारे संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे पूर्वी प्रशिया के कॉनिसबर्ग विश्वविद्यालय से संगीत के विद्वान थे। उनका नाम था अंबिक मजुमदार। वास्तव में जनगण मन की वर्तमान संगीत लिपि तैयार करने का कार्य उन्होंने ही किया था। मेरे गायन और अंबिक मजुमदार के पियानो वादन को सुनने के बाद नेताजी ने निर्णय लिया कि यही हमारी राष्ट्रीय धुन होगी।
1: बर्मा के घने जंगलों में इतिहास न केवल कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो गुनगुना भी रहा था उन सैनिकों के कंठों में जिन्होंने अपनी युवावस्था एक स्वप्न के लिए समर्पित कर दी। इम्फाल की मिट्टी और सिंगापुर की तपती धरती पर जन्मी वो धुनें आज भी इतिहास की सांसों में जीवित हैं।

0: साम्राज्य की तोपें अब कब की खामोश हो चुकी हैं। कूच करते कदमों की आहटें इतिहास में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है, कारावास और निर्वासन, मुकदमों और यातनाओं, विस्मृति और विघटन के पार, वो है एक प्लेलिस्ट, प्रतिरोध का साउंडट्रैक। जब आज तिरंगा हवा में लहराए तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको मातृभूमि के नाम खून से लिखे हुए उस पुराने चिरंतन वचन की गूंज सुनाई दे।
1: Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आनंद श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और प्रांजल, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम में जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रस्तुत जन गण मन के वाद्य संस्करण को छोड़कर आजाद हिंद फौज आयन

0: मंच द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्तों का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसमें बताया गया कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी भी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्षों से केवल 7.4% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस योजना के अंतर्गत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टर या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामले में 5 लाख रुपए तक का मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके जरूरी रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो में प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों के समापन कार्यक्रम के दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स प्रमुख प्रस्तुति देंगे। वहीं BEMZ, कैमी बर्न्स और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं आशुतोष। मुख्य समाचार। अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि यदि पाकिस्तान को द्विपक्षीय मुद्दों पर सहयोग चाहिए तो पहले आतंकी ढांचे को नष्ट करना होगा। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत, 41 लापता। ईरान ने सैन्य हमले रोकने के अनुरोध के अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज किया। ओपेक प्लस देशों ने सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तानी द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देना और घरेलू विफलताओं का दोष भारत पर मढ़ना पाकिस्तान की नीति बन गई है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: UKPNP के अध्यक्ष सरदार शौकत अली कश्मीरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कई बैठकें की। प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान से अपने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का पालन करने और नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग बंद करने का आह्वान किया। प्रतिनिधिमंडल ने गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई, अधिकृत क्षेत्र में इंटरनेट और दूर संचार सेवाओं की बहाली, कर्फ्यू हटाने और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तथा मानवाधिकार संगठनों को स्थिति का आकलन करने के लिए निर्बाध पहुंच की भी मांग की। ये बयान पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति के बीच आया है, जहां पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना ने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर क्रूर कार्रवाई की, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पाक ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन अपहरण के बाद लापता होने को लेकर चिंता व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि आतंकवाद रोधी विभाग CTD, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और सेना ने कई बलूच नागरिकों को हिरासत में लिया है। पाक ने पाकिस्तानी गायब लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें कानूनी सलाह और उनके परिवारों से मिलने की सुविधा देने की मांग की है। संगठन ने जिम्मेदारी तय करने के लिए तुरंत निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की भी मांग की है। अपनी हालिया रिपोर्ट में बलूचिस्तान की मानवाधिकार परिषद ने जून 2026 में 77 हत्याओं और जबरन गायब किए जाने के 63 मामलों का ब्यौरा दिया है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा इबोला प्रकोप बन गया है। 30 जुलाई तक इबोला के 3,605 पुष्ट मामले और 1,587 मौतें दर्ज की गई हैं तथा मृत्यु दर 44% हो गई है। महामारी विज्ञान के 30वें सप्ताह में 567 नए मामले हुए हैं और 296 मौतें हुई, जो अब तक का सबसे बड़ा साप्ताहिक आंकड़ा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@

0: KIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी यह टिप्पणी अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीति प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। श्री ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है लेकिन उसने बातचीत को और समय देने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की सरकारी मीडिया ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि ईरान ने सैन्य कार्रवाई रोकने का कोई अनुरोध नहीं किया था और उसके बयान को झूठा बताया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी थी और चेतावनी दी थी कि अमरीकी हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ईरान जहाजों पर हमले बंद नहीं कर देता और वार्ता के लिए तैयार नहीं होता। अमरीका ने पश्चिम एशिया में अपने नागरिकों से सतर्क रहने और तनाव बढ़ने पर देश छोड़ने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। इस बीच ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमला होता है तो वे पश्चिम एशिया में स्थित प्रमुख इसराइली बुनियादी ढांचे और अमरीकी ऊर्जा केंद्रों पर हमला करने के लिए तैयार है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान सहित 7 ओपेक प्लस सदस्यों ने बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य तेल बाजार की स्थिरता को बनाए रखना और भागीदार देशों को पिछले अतिरिक्त उत्पादन की भरपाई में तेजी लाने की अनुमति देना है। अमेरिका के वाशिंगटन में भीषण जंगल की आग, लगातार सूखे और तेज हवाओं के कारण गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने राज्यव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है और आग जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेज हवाओं के कारण फैल रही जंगल की आग ने लगभग 3,000 एकड़ जमीन को जला दिया है और हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि दमकल कर्मी राज्य भर में 2,00,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली 10 बड़ी जंगल की आग पर काबू पाने में जुटे हैं। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह में वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरई स्वामी ने चीन की राजधानी बीजिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और काउंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की योजना है। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी सूचनाओं के प्रचार पर श्री दुरई स्वामी ने कहा कि चीन सरकार भी इस बारे में चिंतित है और आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि दूतावास गलत सूचनाओं से निपटने के लिए तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि यदि पाकिस्तान को द्विपक्षीय मुद्दों पर सहयोग चाहिए तो पहले आतंकी ढांचे को नष्ट करना होगा। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत, 41 लापता। ईरान ने सैन्य हमले रोकने के अनुरोध के अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज किया। ओपेक प्लस देशों ने सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक

0: Please stay tuned in for the news in Hindi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह

0: हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BMZ, कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukta Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.

0: welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we'll also be taking calls on your mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में देंगे. कोशिश करेंगे कि दे पाएं. सवाल पूछने के लिए आप श्रोताओं हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी. स्नेहा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: जी धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ निशित कुमार.
0: Foreign portfolio investors turn net buyers after 4 months, infuse more than 20,000 crore rupees into Indian equities in July. In bullion market, gold and silver declined last week, and domestic investors to focus on RBI monetary policy decision, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 4 महीने बाद कुल खरीदार बनकर उभरे. जुलाई में भारतीय इक्विटी बाजार में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ. सराफा बाजार में पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई और भारतीय निवेशक अगले सप्ताह आरबीआई की मौद्रिक नीति के फैसले, कॉरपोरेट कमाई के नतीजे और भू राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब रुक करते हैं आज कार्यक्रम में लिए गए पहले खबर के लिए. लगातार 4 महीनों की बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अब भारतीय इक्विटी में कुल खरीदार बनकर उभरे हैं. डिपोजिटरी के ताजा आंकड़ों के अनुसार FPIs ने जुलाई में घरेलू शेयर बाजार में 20,200 करोड़ रुपए का निवेश किया. कुल निवेश में से 6,732 करोड़ रुपए शेयर्स एक्सचेंजों पर खरीदारी के जरिए आए, जबकि 13,468 करोड़ रुपए का निवेश प्राइमरी मार्केट के जरिए किया गया. वैश्विक सेमीकंडक्टर व्यापार में गिरावट के कारण FPIs ने अपने निवेश का कुछ हिस्सा उभरते बाजारों की ओर लगाया. इस खरीदारी में घरेलू मैक्रो इकोनॉमिक सूचकांकों में सुधार और मजबूत तिमाही के नतीजों का भी योगदान रहा है. जुलाई में आए इस बदलाव के बावजूद FPIs ने इस कैलेंडर वर्ष में अब तक भारतीय इक्विटी से 2,54,072 करोड़ रुपए निकाले हैं. इस बीच सरकार की कर नीति में बदलाव के बाद भारत के ऋण बाजार में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बरकरार है. जुलाई माह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने फुल्ली एक्सेसिबल रूट के जरिए ऋण प्रतिभूति बाजार में 3,033 करोड़ रुपए और जनरल रूट के जरिए 29,212 करोड़ रुपए का निवेश किया है. पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है. वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया. सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान सहित 7 ओपेक प्लस सदस्यों ने बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य तेल बाजार की स्थिरता को बनाए रखना और भागीदार देशों को पिछले अतिरिक्त उत्पादन की भरपाई में तेजी लाने की अनुमति देना है. ओपेक प्लस सदस्यों ने सहयोग घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की, जिसके अनुपालन की निगरानी संयुक्त मंत्री स्तरीय निगरानी समिति द्वारा की जाएगी. और श्रोताओं, दिल्ली से हमारे साथ इस बीच यशपाल जुड़ रहे हैं. यशपाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: गुड इवनिंग मार्केट मंथन टीम एंड गुड इवनिंग नेहा जी आल्सो. माय क्वेश्चन इज दैट आई वांट टू इन्वेस्ट सम लॉन्ग

0: स्लाइस ऑफ अब्रॉड आपको दे देते हैं कुछ 10-15% बाहर की सिक्योरिटीज़ में लगा के, तो आपके पोर्टफोलियो के लिए शुरुआत के लिए वो 10-15% भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो ऐसे फंड्स को आप देख सकते हैं जो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकते हैं.
1: Sneha, we were discussing about the markets, and also if we can see, if rather we are seeing that the FPIs have returned, and also US President Trump also saying that there is peace which is coming in the coming days, although it remains to be seen whether it comes at all.
0: Absolutely.
1: So now with the current market situation, do you feel that this trend is only going to go up and probably not go that negative as it has been going over the past 5-6 months now?
0: I would actually like to disappoint everybody listening here, because it is not in, you know, our control or even in anyone's control to sort of promise something that we cannot really promise. Of course, markets will go up or down is basically a hindsight call. And even though, you know, more popular, let's say Warren Buffett kind of investors wouldn't say that. Coming back to the point that you just raised, Mr. Trump having said that peace might just return. And the idea is that his statements have for long been kind of, you know, stirring the market, which actually sort of shows the fact that we cannot depend on the short-term aspects that market continues to offer us. Also, we cannot really control what happens in the market. So the uncertainty bit is slightly out of the way for even a retail investor as well as for experts, like I said. What remains in your control are the factors pertaining to your portfolio, like I was saying, you know, your asset allocation. Make sure to have some kind of debt allocation in your portfolio, because when the markets turn red, your anxiety increases. If you have, let's say, 20% of debt in your portfolio, that will help provide some kind of cushion to your equity and maybe just help you psychologically navigate through those ups and downs. So yeah, asset allocation, rebalancing periodically, continuing with your SIPs, not stopping your SIPs, that becomes your, you know, go-to goal amid all of these chaos.
2: जी बिल्कुल श्रेया, स्नेहा, इसी बीच विनोद जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से. विनोद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: हेलो
2: जी,
3: मैं पूरी मार्केट मदर टीम को नमस्कार.
2: नमस्कार.
3: मैं 2017 से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट, बट मैंने सुना ना रिबैलेंसिंग करना चाहिए, ये सब एक्सपर्ट बोलते हैं, बट मुझे आता नहीं है रिबैलेंसिंग कैसे करते हैं, और अगर इसको ना करें तो लॉन्ग टर्म में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्लीज ये बताएं. थैंक यू.
0: बिल्कुल विनोद जी, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है. रीबैलेंसिंग जो सब बोलते रहते हैं कि करना ज़रूरी होता है, उसका इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से होता है कि साइकोलॉजिकली ये कैसे होता है कि जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स से आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या फिर आप ऑल इक्विटी फंड्स लेते हैं.
2: इसलिए हम क्यों ना यहाँ से शुरू करें कि रीबैलेंसिंग करना होता क्या है.
0: बिल्कुल, ये एक्चुअली यही मैं शुरुआत करी थी. रीबैलेंसिंग का मतलब होता है कि अपने पोर्टफोलियो पे एक नज़र डालना.
2: हाँ.
0: और अगर वो नज़र डाल के आपको डर लग रहा है,
2: हाँ,
0: इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है. आपको अपना एक जो एंजाइटी लेवल्स है उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है. वहां पे एक चीज काम आती है जैसे मैं अभी बता रही थी, एसेट एलोकेशन. कुछ डेट और कुछ इक्विटी सोच के आपने इन्वेस्ट करा होता है, बट मार्केट के उतार चढ़ाव कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो जो एक एलोकेशन होती है जो आपने अपनी सूझबूझ से करी थी वो बढ़ जाती है. तो मान लीजिए आपने ये सोचा था कि इक्विटी आप 70 रखेंगे, आप डेट 30 रखेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा डर जाते हैं जब मार्केट का उतार चढ़ाव एकदम वायलेंट हो जाता है. तो ऐसे टाइम में अब मान लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपने 70 इक्विटी सोचा था, आपका इक्विटी 80 हो गया है और डेट कम हो गया है, तो मार्केट जब वो जूम कर रही है, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया है, बट एक डर बीच में रहता है कि अब यहां से गिर गई तो आपके पास तो उतना डेट है ही नहीं जो आपको एक तरीके का कुशन प्रोवाइड कर पाए. तो जब मार्केट, अगर ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो 100% गिर रहा है, वो डेट की वजह से आप 100 ना गिर के 80% गिरेंगे, तो एक मन में बैलेंस मेंटेन हो जाता है. इसे ही हम रीबैलेंसिंग कहते हैं. अब होता क्या है कि अगर आप नज़र नहीं डालेंगे पोर्टफोलियो पे, तो आपको पता नहीं चलेगा, एकदम से मार्केट गिर जाएगी, आप सोचेंगे मेरा इतना ज़्यादा कैसे गिर गया,
2: नुकसान कैसे हो गया,
0: नुकसान कैसे हो गया. तो उन सब थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए रीबैलेंसिंग करना इम्पॉर्टेंट होता है. अगर मान लीजिए कोई वैसे ही इस तरीके से किया जाता है कि फिर आपने जितना सोचा है कि इक्विटी होना चाहिए, आप उतना बेच कर आप उसको कम कर दीजिए और उसको डेट में मूव कर दीजिए. काफी

0: लोगों के लिए करना मुश्किल हो जाता है। तो मान लेते हैं आप अपने माइंड में एक नंबर सोच लेते हैं कि 10% से जब ऊपर नीचे होगा आप तभी ये एक्शन लेंगे। तो ये एक्शन मेरे हिसाब से, जैसे विनोद जी पूछ रहे थे इसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नुकसान क्या होता है, तो ये बेसिकली अपना एक इंटरनल साइकोलॉजिकल बिहेवियर मैनेज करने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक रहती है। जैसे SIP भी इसीलिए ही हम कहते हैं करने के लिए कि मार्केट के उतार चढ़ाव से आपका एवरेज आउट हो जाता है जो एक प्राइस होता है और उसका जो मूवमेंट होता है। तो अगर विनोद जी आप ये खरीद बेच में नहीं कर पाते हैं, एक साल में भी आपसे ये नहीं हो पाता है, तो मान लीजिए आपका 10% का आपने नंबर सोचा है कि 10% से इक्विटी बढ़ेगा या कम होगा तभी आप एक्शन लेंगे, तो वो एक्शन आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप अपनी बेचने के बजाय आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर रहे थे उनको अगर आप पॉज कर देते हैं, सब फंड्स को नहीं कर सकते, जो फंड आपके लिए नुकसानदायक रह रहा है इस पूरे टाइम में उसके लिए आप पॉज कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे होंगे कि आप अपने बुरे फंड को फीड करना बंद कर देंगे और फिर लंबे समय में ऑटोमेटिकली जो एलोकेशन होगी वो रीबैलेंस हो जाएगी। तो विनोद जी मेरी समझ में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि रीबैलेंसिंग एक साल में एक बार कर लेना चाहिए। इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या हमें ये करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपकी जो एसेट एलोकेशन रहती है वो आपको बिल्कुल सही लग रही है, आपको लगता है आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए, उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं।
1: You are tuned into Market Mantra on Akashwani. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And in some other stories, the National Stock Exchange NSE is set to introduce a new method for closing price discovery through the closing auction session CAS from tomorrow. The new system will change the way closing prices are determined for eligible futures and options F&O stocks in the cash market, with the aim of improving price discovery and aligning Indian markets with the global practices. Under the new framework, non-F&O stocks will continue regular trading until 3:30 p.m. with no change in their trading schedule. Stocks included in the F&O segment will see continuous trading until 3:15 p.m. followed by the closing auction sessions from 3:15 p.m. to 3:35 p.m. Stocks and index F&O trading will continue until 3:40 p.m. This move will extend equity derivatives trading by 10 minutes, resulting in different closing times across market segments. The extension of F&O trading hours is aimed at creating a smoother link between the cash and derivatives markets while enhancing efficiency and improving the accuracy of the closing price determination. Previously, closing prices were calculated using the volume weighted average price VWAP of trades executed during the final 30 minutes of the trading session. Sneha, with the staggered timings of the cash and the derivative markets, how do you see this impacting the markets overall?
0: Right. So the biggest impact actually, like you mentioned, is in the price discovery, and that lies in the derivative segment where this closing auction session actually matters the most, in ways it really doesn't matter for mutual fund investors. However, I would like to actually tune on the other side, because a retail investor would be worried with the news that we just mentioned as to what the impact really is for them. So what happens is, like, every day when the stock market closes at 3:30, every stock gets one closing price, or let's say the average of everything that has happened, which is, like you mentioned, is based on the volume weighted average price. So what this means is, when SEBI says that it has changed, it has actually sort of made your NAVs less manipulative. Since the price discovery now comes down to one particular fair price that is not affected by how the buyers and sellers are coming into the market and reacting to their specific stocks, the NAV is also based on, for a mutual fund, the NAV is also based on this closing price, which gets published in the newspaper the next morning that we guys see. But now with this the new closing auction mechanism that they've mentioned, it is sort of becoming a more fair price. So having said that, it becomes more trustworthy. The NAV that you now see would be sort of less manipulative. So the process has become more transparent, and which is always good for a mutual fund investor, and any investor for that matter. Transparency with your money involved is a bonus.
2: बिल्कुल बिल्कुल. अभी अब हमारे

0: नीचे वाले 50 होते हैं उनका, तो उनमें जो एक लिक्विडिटी का एस्पेक्ट रहता है वो निफ्टी 50 से थोड़ा सा कम रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं रहता है. तो दोनों का ही एक्सपोजर आप रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसे चुनाव करने वाली बात नहीं है. वो आप इस बेसिस पे कर सकते हैं, आप टॉप 50 का एक्सपोजर चाहते हैं कि आप बॉटम 50 का चाहते हैं. बॉटम 50 में आप ऐसा देख सकते हैं कि वो आपको, मतलब जो सेकेंड हाफ होता है वो शायद से आपको एक कुछ टाइम में बेटर रिटर्न पोटेंशियल दे सकते हैं, क्योंकि टॉप 50 ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुके हैं. बट अगर आप प्लेन वेनिला इंडेक्स फंड देखना चाह रहे हैं तो आपको निफ्टी 50 से वो काम आसानी से हो जाएगा. बस जो ज़्यादा खर्चा कम लेता हो और बहुत ही अच्छे तरीके से बेंचमार्क को ट्रैक करता हो.
1: सराफा बाजार में पिछले सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रहा. यूएस ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी, डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व के सख्त रुख के कारण बाजार में सुस्ती आई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना फ्यूचर्स कारोबार में सप्ताह के दौरान 1% से अधिक लुढ़क कर 141,511 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी फ्यूचर्स कारोबार में 2% से अधिक की गिरावट के साथ 217,198 रुपए प्रति किलोग्राम पर समाप्त हुई. कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना फ्यूचर्स कारोबार में सप्ताह के दौरान 0.5% गिरकर $4,000 से अधिक प्रति ट्राई औंस पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी फ्यूचर्स कारोबार में सप्ताह के दौरान लगभग 2% गिरकर $58 प्रति ट्राई औंस पर बंद हुई. भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है. ये वृद्धि पहले के अनुमानों से अधिक है. कल जारी SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अनुमानों से बेहतर है.
2: And domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including the Reserve Bank of India's monetary policy decision and a fresh round of quarterly earnings reports. Market sentiment will also be driven by geopolitical developments, crude oil prices, foreign institutional investors, FII flows, commodity prices and currency movements. Market participants will closely monitor the key economic indicators, including purchasing managers' index PMI readings, foreign exchange reserve figures and monthly automobile sales data. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week. 3 main board IPOs are scheduled to make their stock market debut, while 1 new main board issue will open for subscription. Globally, investors would closely monitor geopolitical developments surrounding the West Asian conflict, along with the US employment data and a fresh batch of corporate earnings. Inflation data from South Korea will also remain on the radar. Quick comment on that, Sneha. How do you see the markets playing out next week?
0: I always believe that the market outlook is should always remain sort of cautiously positive, since I am a very optimistic person and I would like investors to also believe in that.
1: Sneha, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और निशित के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: Thank you, Sneha. And before we close the headlines once again, foreign portfolio investors turn net buyers after 4 months, infuse more than 20,000 crore rupees into Indian equities in July. In the bullion market, gold and silver prices declined last week, and domestic investors to focus on RBI monetary policy decision, corporate earnings results and geopolitical developments for Qs next week. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
5: நேரம் 11:40. ஆகாஷ்வாணி.
6: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை FM கோல்ட்.
5: நேர்கள் இனி கேட்கலாம் திரைகானம். முதலில் எதிர்நீச்சல் திரைப்படத்திற்காக பி.பி. ஸ்ரீனிவாஸ், பி.சுஷீலா பாடியுள்ள பாடல்.

0: தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा संकल्प विकसित भारत अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से

0: हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक

0: युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष में केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 14 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन की तुलना बांग्लादेश में 2024 के उस आंदोलन से की जिसने शेख हसीना की आवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्होंने कहा कि ढाका में हुए छात्र आंदोलन ने हमें धोखा दिया। कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में प्रख्यात लेखिका ने कहा कि जंतर मंतर की घटनाओं पर उन्होंने नजर नहीं रखी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के एक छोटे से वीडियो क्लिप ने उन्हें बांग्लादेश में जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन की याद दिला दी। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukta Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi yesterday, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event, including

0: ஒழித்த அந்த பாடலுடன் இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அசுதோஷ் மிஸ்ர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा

कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देश

पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतदान आज सवेरे 8 बजे शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 14 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन की तुलना बांग्लादेश में 2024 के उस आंदोलन से की, जिसने शेख हसीना की आवामी लीग सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्होंने कहा कि ढाका में हुए छात्र आंदोलन ने हमें धोखा दिया। कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में प्रख्यात लेखिका ने कहा कि जंतर मंतर की घटनाओं पर उन्होंने नजर नहीं रखी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के एक छोटे से वीडियो क्लिप ने उन्हें बांग्लादेश में जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन की याद दिला दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ

बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं की ओर संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग में तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा

0: बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 14 जिलों में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में कल बड़ी संख्या में लोगों ने धरना दिया और मुजफ्फराबाद की ओर शांति मार्च निकालने की तैयारी की। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि सुरक्षा बल रुक रुक कर भारी गोलाबारी कर रहे हैं। कमेटी ने कहा कि ट्रेक में महिलाएं और बच्चे धरने में शामिल हैं और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि रावलकोट चौक पर लोग धरना दे रहे हैं और मुजफ्फराबाद की ओर शांतिपूर्ण मार्च कभी भी शुरू हो सकता है। एक्शन कमेटी ने बताया कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना के दमन कार्रवाई में 50 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi yesterday, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event, including My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandavia said the dream of a drug-free India can be realized only through active public participation and the leadership of the youth. He was addressing a program at Amrita Hospital in Faridabad after the national launch of the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. Dr. Mandavia described the 100-week campaign as a nationwide people's movement aimed at mobilizing the youth for nation building. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations supported by stronger economic indicators, improved industrial activity and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee report released on Saturday, the growth estimate marked an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. The Delhi government has notified a scheme to provide compensation to the next of kin or legal heirs of prisoners who die an unnatural death while in custody within the prisons of the National Capital Region. Under the scheme, compensation of up to 7.5 lakh rupees will be awarded depending on the specific circumstances. Compensation of 5 lakh rupees has been fixed for cases involving negligence in the discharge of duties by prison officials or staff, negligence by medical or paramedical personnel, and cases of prisoner suicide. All arrangements are in place for the counting of votes for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat, and Madhya Pradesh today. Polling for the Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh were held on the 30th of last month. Counting of votes will begin at 8 a.m. In Madhya Pradesh, the first Shravan procession of Lord Mahakaleshwar will be taken out in Ujjain today.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड

झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के धार जिले का रूपखेड़ा गांव बागवानी विभाग के सहयोग और किसानों की मेहनत से आधुनिक कृषि का एक नया मॉडल बन गया है। फूलों की खेती के कारण यह गांव अब मध्य प्रदेश के मिनी हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। पहले यहां के किसान गेहूं, चना, मक्का और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसल पर निर्भर थे, पर अब संरक्षित कृषि से पॉली हाउसेज और शेड नेट

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जल स्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूझलाधार वर्षा की संभावना है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा प्रांत में कल एक शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर हुए आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। स्वात जिले के काबुल कस्बे में पुलिस थाने के ठीक सामने हुई रैली के दौरान यह विस्फोट हुआ। फिलहाल हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह या व्यक्ति ने नहीं ली है। 11 दिनों की कड़ी खेल प्रतिस्पर्धा के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आज ग्लासगो में एक भव्य समारोह के साथ समापन हो गया। समारोह में शताब्दी संस्करण की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। स्कॉटलैंड

0: के अधिकारियों ने राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज और कमान भारतीय प्रतिनिधियों ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संगठन के अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को सौंपी। समापन समारोह की शुरुआत स्कॉटलैंड की सांस्कृतिक झलकियों से हुई, पर जल्दी ही यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और प्राचीन परंपरा के जीवंत प्रदर्शन में बदल गया। कार्यक्रम में भारत स्कॉटिश संस्कृतियों की जुगलबंदी भी देखने को मिली, जिसमें संगीतकारों और नर्तकों ने अपने कौशल का मनमोहक प्रदर्शन किया। भारत 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे करने नहीं देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना आज सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15% और औद्योगिक ऋण में 19% की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 7% से अधिक दर्ज हुआ। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल एक शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर हुए आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के ठीक सामने हुई रैली के दौरान यह विस्फोट हुआ। फिलहाल हमले की जिम्मेदारी किसी भी समूह या व्यक्ति ने नहीं ली है। 11 दिनों की कड़ी खेल प्रतिस्पर्धा के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का ग्लासगो में एक भव्य समारोह के साथ समापन हो गया। समारोह में शताब्दी संस्करण की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज और कमान भारतीय प्रतिनिधियों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संगठन के अध्यक्ष PT उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को सौंपी। समापन समारोह की शुरुआत स्कॉटलैंड की सांस्कृतिक झलकियों से हुई और जल्द ही ये भारत की सांस्कृतिक विविधता और प्राचीन परंपरा के जीवंत प्रदर्शन में बदल गया। कार्यक्रम में भारत स्कॉटिश संस्कृतियों की जुगलबंदी भी देखने को मिली। भारत 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर 4th स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत राष्ट्रमंडल खेलों की 1 से अधिक बार मेजबानी करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: News read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो मन से स्वस्थ हो आत्मविश्वास से भरपूर हो।